FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है इतवार, शक संवत 1948, आषाढ़ माह, 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2014

26 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार धन की केवल तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। जो मनुष्य धन को परोपकार में नहीं लगाते या स्वयं नहीं भोगते, उनके धन की केवल तीसरी गति होती है, अर्थात धन का विनाश हो जाता है। तात्पर्य ये कि हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हो चुके हैं। झरोखा में जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, सुबह 10 बजे, दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। यही क्रम रहता है शाम 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स।

10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। इस कार्यक्रम में आज का टॉपिक रहेगा सांस की आस केवल पेड़ों के पास। यह है हमारा आज का टॉपिक। अपने विचार इस प्रोग्राम में हमसे साझे कीजिएगा 10:05 पर।

यादों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। इसके अंतर्गत पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में जाने माने संगीतज्ञ ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट के संगीत सफर की कहानी उन्हीं की जबानी। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। इस कार्यक्रम में हम आपको अपनी तरफ से 5 फिल्में देते हैं। उन फिल्मों में से आप अपनी पसंद का गाना चुनते हैं और हमें बताते हैं, हम आपके लिए प्ले करते हैं।

दोपहर 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर। 5:30 बजे आज सुनिए कार्यक्रम नॉन स्टॉप नगमे, फिल्मी गाने बैक टू बैक।

0: शाम 6:30 पर अमृत बानी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सुनेंगे सुरसांझ कार्यक्रम में कुछ पंजाबी गाने। ये तो थी जानकारी आकाशवाणी चंडीगढ़ से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती से कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। ये तो था झरोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान भाग 247।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोह रूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान भाग 247।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी। ये जो बांसुरी दिख रही है, पांच तरह की बांसुरी है इसमें, तो ये जो एक तो शंख बांसुरी है
2: जी,
1: और एक सबसे छोटी वाली बांसुरी को क्या कहेंगे?
2: ये हाई पार सप्तक।
1: गजब,
2: यहाँ तक चला गया। इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ।
1: हाँ।
2: थोड़ी सी शार्प हो जाएगी।
1: अरे गजब।
2: मैं पीछे। हाँ।

0: जी, क्या बात है, बढ़िया। और उससे जो बड़ी वाली है उस वो कौन सी
1: ये है? पन्ना बाबू की बनाई हुई मेन क्लासिकल सोलो इसमें बजता है
0: जी।
1: पन्ना बाबू के बांसुरी जो बनाई है ये, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं थोड़ा सा हंस ध्वनि आप

0: Rolou isso pra você estar aqui. पन्ना बाबू के बांसुरी जो बनाई है ये उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं थोड़ा सा हंस ध्वनि आपको सुना रहा हूं।
1: जी जी सुना।
0: और बंदिश मेरे गुरुजी की है
1: जी। प्लीज
0: कल्पेश भाई आप शुरुआत करिए।

0: वाह, राघवन सिंह ध्वनि पे ये बांसुरी की तान थी, अद्भुत थी, मोहित कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। तो हम आखिर में विदा के रूप में विदा नहीं करेंगे, बल्कि आप इस कड़ी को, इस श्रृंखला की विदा में आमद करेंगे कि आप फिर आते रहिए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक परंपरा है, राग भैरवी से अंत करते हैं
0: जी।
1: आज की कड़ी आखिरी कड़ी है, इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि फिर आना है
0: जी।
1: तो भैरवी में एक जगजीत सिंह जी के भी बहुत सारे सुपरहिट गजलों में मैंने बजाया, उस स्टेज में गाते थे फयाज खान साहब को याद करके
0: जी।

0: साथ में जो गायन का सुर भी साधा बड़ा ही मोहक था, बहुत अच्छा लगा। तीन ताल में निबद्ध ये बंदिश थी, अजीत जी ने बड़ी खूबसूरती से इसे अंजाम दिया और आज ये इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस कड़ी को, इस श्रृंखला को खत्म ना होने दें और कड़ियां इसमें जोड़ते जाएं और मालाएं पिरोते जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है। तो आज इस आखिरी कड़ी में हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सबको धन्यवाद कहते हैं। अजीत पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मनोयोग से आपने तबला संगत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। कल्पेश जी, आपने बहुत ही मोहक ढंग से बांसुरी पर संगत कर रहे थे पंडित जी के साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: रोनू दादा, आज इस श्रृंखला में जितनी कड़ियां पिरोई गई हैं, इन कड़ियों में जो बांसुरी की तान आपने छेड़ी है, जो जानकारियां दी हैं, इसके लिए मेरे पास फिलहाल शब्द नहीं है, बस इतना श्रोताओं को बता दें कि ये अद्भुत श्रृंखला है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी, हम लोग भी यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न हुए और लगा ही नहीं कि कैसे पूरा दिन बीत गया। और हम चाहते हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में बार बार आएं और इसी तरीके से माँ सरस्वती की सेवा करें।
0: जी, हम सबका सौभाग्य है, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार,
2: धन्यवाद।
3: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। आपको बता दें, बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
5: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

अगला गाना हमने लिया है सैमसन फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, मजरू सुल्तानपुरी है गीतकार और तर्ज बनाई है चित्रगुप्त ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। डीजे सुने कमर जलालाबादी का लिखा और हंसराज बहल का संगीत बद्ध किया गाना। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम रुस्तम-ए-हिंद।

भी जाओ यूं दिल ना जलाओ। हाय

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में आया तूफान। इस फिल्म का गाना असद भोपाली है, गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज की भूले पिसे गीत कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दारा सिंह फिल्म का ये गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का भोले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में सूरज फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना। इसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है वसंत देसाई ने।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS Care App। सोना खरीदने से पहले BIS Care App पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के, लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में झुक गया आसमान। इस फिल्म का गाना, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राह प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम आप आए बाहर आई।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार प्रभात। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद

0: पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे जॉइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्या

0: समस्याओं से जूझते हैं। इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

0: नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
1: सुनिए, सुनिए,
2: कहिए, कहिए ना।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए हाँ हाँ
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: पहले सोचो फिर बोलो, बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हो या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथ ही किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है, उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।

0: बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोट

0: बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं रेखा भारद्वाज की आवाज में डेर इश्क क्या फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के बोल विशाल भारद्वाज की तर्ज और इस गाने में नृत्य के बोल हैं पंडित बिरजू महाराज के स्वर में।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 14 फेरे। इस फिल्म का गाना राजीव भल्ला, रिया दुकल और राशि हरमलकर की आवाजों में। लीजिए सुनिए मनाली चतुर्वेदी की आवाज में एक्टिंग का भूत। इस फिल्म का गाना, गीतकार हैं काशी कश्यप और संगीतकार हैं काशी रिचर्ड।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में तू झूठी मैं मक्कार, इस फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

अभी आप सुन रहे थे छलांग फिल्म का ये गाना। लीजिए अब सुनिए स्नग्धजीत भौमिक की आवाज में छिपकली फिल्म का गाना। सो हम मजुमदार हैं, गीतकार और संगीतकार हैं मीमो।

0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम भाग मिल्खा भाग।

दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ होप, यानी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। आशा हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आशा अंधकार में एक दीपक के समान हमारा जीवन पथ आलोकित करती है। आज चारों ओर तनाव है, भागदौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, ऐसे में आशा हमारा संबल बन जाती है। एक आशावान व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश का भी भला करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे के सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाज़ों में इकबाल फिल्म का गाना। इरफान सिद्दकी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा था सलीम सुलेमान ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: चलो आ जाओ यारों, भी डांस फ्लोर पे।

दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, यानी रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 से मनाना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर रेत और धूल भरी आंधियों के असर के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस चुनौती से निपटने के लिए वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि आवश्यक है। इस वर्ष की थीम है स्रोत से प्रभाव तक, रेत एवं धूल भरी आंधियों से भूमि और जीवन की रक्षा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए देहाती डिस्को फिल्म का ये गाना

अभी आप सुन रहे थे दिव्या कुमार की आवाज में देहाती डिस्को फिल्म का गाना। गीतकार थे प्रणव वत्स और संगीतकार थे गणेश आचार्य। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कड़ की आवाजों में गीतकार हैं अमरीक सिंह और कुमार, और संगीतकार हैं जसलीन रॉयल। फिल्म का नाम बार बार देखो और उसका ये डांस नंबर।

0: अंकुश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, आज का अखबार।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़, क्लासिफाइड एड्स।
2: चंडीगढ़ सेक्टर 36 से 40 में 2BHK फ्लैट खरीदना है तो संपर्क करें 94182-95950।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़, क्लासिफाइड एड्स।
2: नौ बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, आज का अखबार।
3: आज का अखबार। आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
5: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
6: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें PIS.gov.in पर।
2: दोस्तों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। इस प्रोग्राम आज का अखबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे, अखबारों से ली गई जानकारी आपसे साझी करेंगे। और आज जो पहली जानकारी हम SIR के बारे में आपसे साझी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान आपके शहर में चल रहा है और ये अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई को है और अब मतदाताओं के पास केवल 3 दिन का समय शेष बचा है। अब इसके लिए निर्वाचन आयोग ने क्या कहा है, निर्वाचन आयोग ने अपील की है लोगों से कि वो अंतिम समय तक का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द अपना जो फॉर्म है वो जमा करें। इसी उद्देश्य से 12 जुलाई यानी आज शहर के सभी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां बूथ लेवल अधिकारी BLO सुबह 9:30 बजे यानी अब से लेकर शाम 5:30 बजे तक मौजूद रहेंगे। और इस शिविर में आप जा सकते हैं और अपनी जो भी बात आप बताना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। इन शिविरों में मतदाता गणना प्रपत्र भर सकेंगे, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और चुनाव संबंधी अन्य समस्याओं का समाधान भी कराया जाएगा। विभाग का कहना है कि अंतिम दिनों में भीड़ बढ़ने से संभावना को देखते हुए लोगों को पहले ही प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए, यानी लास्ट डे की वेट नहीं करनी चाहिए। वैसे 3 दिन शेष बचे हैं, आज विशेष शिविर लग रहा है, 9:30 बजे से शुरू हो गया है, 5:30 बजे तक ये लगेगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार जिन मतदाताओं को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है वो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET ऐप और पोर्टल पर उपलब्ध बुक अ कॉल विद BLO इस फैसिलिटी के माध्यम से भी संबंधित BLO से संपर्क

कर सकते हैं। समय रहते गणना प्रपत्र जमा करने का बार बार विभाग जो है वो निवेदन कर रहा है। इसलिए सभी पात्र मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वो अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर समय रहते गणना प्रपत्र जमा करें। अब अभियान के सामने सबसे बड़ी चुनौती 3 दिन ही शेष होना है, तो इन 3 दिनों में जल्दी से जल्दी अपना काम करवा लें। ये है आज की पहली खबर प्रोग्राम की जो हमने आपसे की शेयर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और अब बारी है हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों में। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस। सबसे पहले प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यात्रा की बात करें। न्यूजीलैंड में 25 साल पहले मिला मफलर पहनकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें हैं, दोस्ती है, मूल्य है और प्रतिबद्धता है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टिकाऊ व्यापार और नवाचार का मजबूत मंच बने।

आर्थिक साझेदारी 10 समझौते हुए हैं 2030 तक 35,000 करोड़ का व्यापार का लक्ष्य। वियतनाम में नाव पलटने से 15 भारतीयों की मौत हो गई है। तेज हवाओं से हादसा 5 मिनट में, बचाव अभियान। ब्रह्मोस और आधुनिक हथियारों से लैस INS महेंद्र गिरी नौसेना में शामिल। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह जल्द ही करेंगे भारत की यात्रा। अंटार्कटिका से 4 दशक पहले टूटकर अलग हुआ सबसे बड़ा हिमखंड A23A अब लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यह हिमखंड 40 साल की समुद्री यात्रा तय करने के बाद टूटकर अलग हुआ। राम मंदिर चढ़ावा मामला, हर संपत्ति का हिसाब तलाश रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम फोटो से AI इमेज का म्यूज इमेज फीचर हटाया गया। कारोबार जगत से जुड़ी खबर है, 1.7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, अंतिम तिथि 31 जुलाई। खेलों की दुनिया में चलें तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। 88वें मिनट में विजयी गोल हुआ। ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे सुपर सब मिकेल मेरिनो। और क्रिकेट की बात करें तो 5वां T20 इंग्लैंड ने 257 बनाकर भारत को 56 रन से हराया 3 विकेट पर। और एथलेटिक्स की बात करें तो अनिमेश कुजूर विदेश में सबसे तेज भारतीय धावक बने। जर्मनी में आयोजित फास्ट आर्म्स फास्ट लेग्स इस प्रतियोगिता में वो सबसे तेज भारतीय धावक बने। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

0: आप सुन रहे हैं आज का अखबार विविध भारती चंडीगढ़ से। प्रोग्राम जारी है और आगे बढ़ने से पहले यहां रुकते हैं और सुनते हैं प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: आज का अखबार प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। लीजिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और एक नज़र आज की रीजनल हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियाँ आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। सबसे पहले पंजाब हरियाणा से जुड़ी एक साझी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर कैंट स्टेशन का करेंगे उद्घाटन और हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे 17 जुलाई को। पंजाब में 5 महीने में दूसरी बार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे से भाजपा को मिशन पंजाब में रफ्तार की उम्मीद। पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुर तेज, बागियों को नहीं मना पाए कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने किया शक्ति प्रदर्शन। पंजाब में 35% कैंसर के मरीज बढ़े, सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग किया घोषित। जो सुन नहीं पाते पंजाब में उनके भी बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने वाले बघेल चला पाएंगे वाहन। फिल्म सतलुज पर प्रतिबंध जारी रखने की सिफारिश। पंजाब के बाद अब चलते हैं हरियाणा की ओर। मानसून में उपायुक्त नहीं बैठेंगे कार्यालय, संभालेंगे फील्ड में मोर्चा। हर जिले की जारी होगी हेल्पलाइन। सरकारी डेटा पर रहेगा 24 घंटे पहरा हरियाणा में। हरियाणा लागू करेगा डिजिटल कवच। सुशासन का नया आधार बनेगी साइबर सुरक्षा। पंजाब में कांग्रेस की बात करें तो बूथ से आंदोलन तक संगठन को धार देने में जुटी कांग्रेस। दिया ग्राउंड प्लान, प्रभारी लेंगे प्रत्याशियों से 1-to-1 फीडबैक। हरियाणा आबकारी नीति की बात करें तो QR आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू। हर बोतल की होगी रियल टाइम निगरानी। पंजाब हरियाणा के बाद अब हिमाचल की करें बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने किया 3 टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में। हिमाचल में किन्नौर में सांगला घाटी को जोड़ने वाला वैली ब्रिज गिरा। प्रदेश भर में 320 सड़कें बंद।

रामपुर में 500 मीटर सड़कें बही, पौंटा साहिब और रोहड़ू एनएचए बंद। और हिमाचल में 4 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना, 14 जुलाई से कमजोर पड़ने की संभावना। ये तो थी ओरिजिनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं अपनी रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब एक नज़र आज की लोकल हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की।

होगी मजबूत। और ये सीटें GMCH गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 में बढ़ी हैं। चंडीगढ़ में मानसून की सक्रियता के बीच सुखना लेक का बढ़ा जल स्तर, एक दिन की तेज बारिश से खोलने पड़ सकते हैं गेट। चंडीगढ़ में ई कार खरीदने पर अब नहीं मिलेगा इंसेंटिव, दो पहिया थ्री व्हीलर और अन्य पर जारी है छूट, लेकिन कार पर नहीं मिलेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में 15 से 18 जून जुलाई तक होगी BSc ऑनर्स बी फार्मा की काउंसलिंग। PGI का मेक इन इंडिया कैथेटर अब मीटर बताएगा आंत कितनी बीमार है, मरीजों के लिए जगी नई आशा। बिना बायप्सी पकड़ी जाएगी बीमारी, दर्द और लंबे इंतजार से मिलेगी मरीजों को राहत। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 20 से 25 जुलाई तक रोज 4 घंटे का रहेगा ब्लॉक। स्टेशन के वर्ल्ड क्लास अपग्रेडेशन के तहत होने वाले निर्माण कार्य के कारण 6 दिन तक कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदले गए हैं। तो अब जब भी आप स्टेशन पहुंचें तो आपकी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म नंबर पर आ रही है ये पहले पता कर लें। चंडीगढ़ में अब 120 दिन में सुलझाना होगा मकान मालिक किराएदार का रेंट विवाद। एग्रीमेंट का डिजिटल पंजीकरण होगा अनिवार्य, विवाद सुलझाने के लिए रेंट अथॉरिटी। 2026 का ड्राफ्ट जारी।

SIR की बात करें तो 3 दिन बचे हैं, बाकी हैं। आज चंडीगढ़ शहर में विशेष शिविर लग रहा है। नहीं भरा SIR फॉर्म तो बढ़ सकती है मुश्किलें। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आज BLO करेंगे फॉर्म भरने में मदद। तो आज आप जा सकते हैं अपने नज़दीक मतदान केंद्र पर। अब 50 और युवा पहनेंगे सफ़ेद कोट। चंडीगढ़ के GMCH सेक्टर 32 में बढ़ी MBBS की सीटें। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दी मंजूरी। 150 से बढ़कर 200 हुई सीटें। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में चंडीगढ़ की बढ़ती भूमिका।

0: और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि 10:05 पर आज के हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में टॉपिक रहेगा सांस की आस केवल पेड़ों के पास। तो अपने विचार इस प्रोग्राम में हमसे साझे कीजिएगा। और अब चलते चलते शहर में बिजली की आपूर्ति कहां कहां बाधित रहेगी ये आपको बता दें। जरूरी मरम्मत कार्य के चलते आज सेक्टर 34 में गांव दड़वा मक्खन माजरा रायपुर STP2 के भागों में सुबह 10 बजे से 1:30 तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। अब आज का अखबार कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क

0: के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
1: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
2: आज का अखबार, ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजे ही अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जनकेंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशाल अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवम्बर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त सदस्य समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग ने फूक वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रहे स्पीड बोट फूक वोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा शामिल है। विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खेलों में फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में

0: स्वीडन ने नॉर्वे को 2-1 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रोग्राम है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, लेकर हाजिर होंगे कुछ ही पलों में।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं, आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे और किसी एक मुद्दे पर, एक टॉपिक पर बात करेंगे। आप सबको मालूम है और इन मुद्दों पर बात करने के लिए जो अलग अलग मुद्दे होते हैं हर बार हर प्रोग्राम में, हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। दोस्तों, बारिशों का मौसम है, मानसून का मौसम है। इस मौसम में पानी की कमी नहीं होती, मिट्टी नरम होती है और ऐसे में अपने हाथों से एक पौधा लगाना, पेड़ लगाना, ये एक सुनहरी मौका होता है, हरा भरा मौका होता है। तो इस मौके को ध्यान में रखते हुए आज देश भर में अभियान भी चल रहा है पेड़ लगाने का, हरियाली को और बढ़ाने का। बहुत सारी संस्थाएं जो हैं शहर में इस मौसम में ऐसा काम करती हैं, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधे लगाती हैं और पौधों का वितरण जो होता है पेड़ों का, वो मुफ्त में किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ें और अपनी हरी भरी वसुंधरा को बरकरार रखने के लिए और पेड़ पौधे लगाएं। आज इसी से ही जुड़ा हमारा टॉपिक है, पेड़ों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आपको भी पसंद आएगा। कि सांस की आस केवल पेड़ों के पास, क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक को लेकर, आप अपने अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें बता सकते हैं कि इस मौसम में आप किस तरह से कोई अपने हाथ से पौधा लगाते हैं या आपने लगाया हो, कोई ऐसा संस्मरण हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो जहां आप शामिल हुए हों और आपको आज तक वो कार्यक्रम याद है। वैसे इस सीजन में वन महोत्सव भी मनाया जाता है, तो पूरी तरह से कोशिश होती है कि अपनी धरती को हरा भरा बनाने के लिए इस खास मौसम का, मानसून का, बारिशों का फायदा उठाया जाए। तो चलिए, सांस की आस केवल पेड़ों के पास ऐसा क्यों कहा जाता है, बस इसी टॉपिक पर आपने अपने विचार हमसे साझे करना है। नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए, खास तौर से उन श्रोताओं के लिए जो इस प्रोग्राम में आज

0: जी हो सकता है कि पहली बार बात करना चाहें, 2660615, 2660617 और 2660619, ये तीन नंबर्स हैं, इनमें से किसी एक को डायल करना है। और डायल करने से पहले, बात करने से पहले, कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जो नेटवर्किंग है वो एरिया वो बिल्कुल सही है और आवाज़ कटे ना, स्पष्ट रूप से हम तक पहुँचे, हमसे भी ज़्यादा हमारे तमाम सुनने वालों तक पहुँचे तो बेहतर रहता है। तो चलिए निकलते हैं पेड़ों के आसपास, सांस की आस। हेलो चंडीगढ़ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: अनिल पुंजी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते नमस्ते।
1: मैं शीश कुमार 42 सेक्टर से बोल रहा जी।
0: जी
1: सर जी।
0: हाँ जी फरमाइए सतीश जी।
1: पेड़ों की छाया माँ की छाया एक समान
0: जी,
1: फिर क्यों ना करें हम इनका सम्मान
0: जी।
1: पेड़ों का सम्मान करेंगे हमारी जिंदगी चलती है जी, पेड़ों से
0: जी
1: हमारी जिंदगी का जो आधार है पेड़ ही है
0: जी।
1: पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जी, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर। पेड़ पानी भी बनाते हैं जी
0: जी।
1: पेड़ हमें फल भी देते हैं जी। पेड़ टेम्परेचर भी बहुत कंट्रोल करते हैं, भूमि का कटाव, पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं जी। जी
0: बिल्कुल सही फरमाया जी आपने,
1: पेड़ जो है फल फ्रूट भी देते हैं, हम इनके खा के हम बड़े होते हैं जी। जितने पेड़ लगाएंगे हमारा उतने ही अपना जिंदगी बनेगी जी, सब पूरी दुनिया की।
0: बिल्कुल,
1: हम सब एक दूसरे के लिए बने, पेड़ हमारे लिए बने हैं, हम पेड़ों के लिए बने हैं जी।
0: जी बिल्कुल सही कहा
1: जा रही है जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपकी बात इत्मीनान से सुन रहा हूँ, बीच बीच में कोशिश करता हूँ बोलने की।
1: बोलिए जी सर जी, आप बोलिए।
0: नहीं पहले आप पूरा कीजिए।
1: मेरे कहने का मतलब ये है जी, हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, भविष्य के लिए लगाए जी। हमारे जो आज हम पेड़ लगाएंगे हमारे बच्चे खाएंगे जी आगे जाके।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं,
1: पेड़ बहुत लगाए जी बचपन में।
0: हाँ तो कुछ वो याद कीजिए, वो बचपन में लगाए, अब नहीं लगाते कभी, अब मौका नहीं मिलता।
1: अभी मैं लगा के आया जी, हमारे पास यहाँ तो जगह नहीं है, अब मैं पसोरा नर्सरी में लगा कर आया, थोड़ी दूर जाके बाद मैंने आम का पेड़ लिया जी 100 रुपए का, फिर मैंने दूर जाके थोड़ी लगाया, तो उसकी ड्यूटी लगा दी जी पानी वगैरह दे। अपना अप्रैल में मैं लगा के आया था जी।
0: जी
1: अब वो काफी बड़ा हो गया जी पेड़, मेरे यहाँ तो जगह नहीं है लेकिन थोड़ी दूर जाके जगह है, मैं पेड़ वगैरह लगाता रहता, शिफ्टिंग कर देता, हमारे पीपल बहुत उग जाते हैं जी
0: जी,
1: छत पे मैं शिफ्ट कर देता जी उनको।
0: हाँ
1: हमने बचपन में बहुत पेड़ लगाए जी, आम जामुन अमरूद अनार, पिताजी को बहुत बड़ा मकान मिला हुआ था जी सरकारी
0: जी,
1: लेकिन हमने ये नहीं सोचा जी सरकारी मकान है, हम वहां पेड़ लगा के आए। अभी भी वो जामुन आम अनार आड़ू सब फल देते हैं जी, पीपल भी हैं वहां पे
0: जी,
1: जो नए किराएदार आ रहे हैं वो लुफ्त उठा रहे हैं जी वहां पे।
0: ये तो है जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
1: हमने ये नहीं सोचा हमने ये मकान छोड़ के जाना, क्योंकि वो मकान हमने छोड़ना ही था, सरकारी मकान था जी
0: जी,
1: बहुत बड़ा मकान मिला था जी सर पिताजी को।
0: बहुत अच्छी बात है, आप देखिए सतीश जी, आपने अपने बचपन को याद किया और आज आप कहते हैं कि आपके पास इतनी जगह नहीं है, लेकिन शहर में बाहर कहीं ना कहीं
1: मैं लगाते आता। हाँ। जी अपने घर में तो नहीं है लेकिन मैं बाहर लगाता रहता, मेरे आप यकीन नहीं करोगे, जहां मैं रहता 1.25 किलोमीटर का जंगल है
0: जी,
1: 50 मीटर की दूरी पर मेरे घर से
0: जी,
1: वहां भी पेड़ लगा लेते हैं जी हम, बहुत बड़ा जंगल है जी, मेरे घर के पास 3 जंगल है जी अपने 1 किलोमीटर के एरिया में, 1.25 किलोमीटर, एक 1.25 किलोमीटर का, एक आधा आधा किलोमीटर का, एक मतलब 200-200 मीटर का।

0: जी
1: यहाँ जंग बहुत हाँ। पेड़ है जी मेरे घर के पास।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बात करने के लिए।
1: अच्छा सर जी एक बात और बताऊं।
0: बोलिए।
1: पेड़ों पे जानवर आते हैं जो अपना पक्षी
0: जी,
1: वो ऐसे पक्षी आते हैं माइग्रेटेड
0: जी,
1: जो मैंने देखा उन्हें तोते आते हैं विदेशी तोते जी।
0: नहीं ये तो आपने पेड़ों के बारे में बताया और आज का जो हमारा टॉपिक है कि सांस की आस केवल पेड़ों के पास।
1: ये सांस सांस हमें पेड़ों से ही मिलेगी जी।
0: हाँ।
1: पेड़ों के बगैर तो सांस हमें चल ही
0: हाँ।
1: नहीं सकती।
0: हाँ।
1: क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी हमारी सांस नहीं चलेगी। ये पानी नहीं बनाएंगे हम।
0: हाँ।
1: पानी नहीं पी पाएंगे
0: जी जी
1: जी है जी। ठीक है सर जी
0: शुक्रिया जी बहुत बहुत आपका। आपने तो आज आते ही इतने सारे पेड़ लगा दिए मजा आ गया।
1: थैंक यू सर जी आपने बहुत टाइम दिया
0: जी जी।

0: और वाकई दोस्तों, पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं, बल्कि मौसम का जो चक्र है, ये हमारे पेड़ जो हैं उसको एक तरह का बैलेंस बना के रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पेड़, और पेड़ों से धरती का श्रृंगार होता है, हरियाली बरकरार रहती है, और ऐसे में पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक और हमारे श्रोता ऑनलाइन है। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
0: जी
1: जी जी जी
0: जी, बोलिए साहब
1: जी। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें जो है, जैसे कि पौधा लगाना चाहिए, हमें जो पेड़, अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ हमें कई चीजें देता है, सिर्फ हवा नहीं देता, लेकिन हमें हर चीज देता है, जैसे फल फ्रूट वो तो देता ही देता है, लेकिन जब हम पेड़ के पीछे बैठते हैं तो फिर कितना आराम का आनंद आता है, कितनी छांव भरी जो है, ठंडी जो हवा आती है जब हम पेड़ के पीछे हम बैठते हैं, तो इसलिए पेड़ जो है हमें बहुत कुछ देता है, तो इसलिए हमें पेड़ की जो कदर करनी चाहिए, पेड़ को हमें इस तरह से केयर करनी चाहिए जिस तरह से एक माँ बाप जो अपने बच्चों की करते हैं।
0: और देखिए, आपके हिमाचल में तो पेड़ों की हेरिटेज है।
1: जी जी जी जी।
0: आप किस तरह से इतने बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ जो हैं देवदार के,
1: जी जी,
0: हिमाचल की शोभा बढ़ाते हैं।
1: जी जी।
0: आपके गांव के आसपास की पहाड़ों की शोभा बढ़ाते हैं।
1: जी जी।
0: और गगनचुंबी जो हैं वो पेड़ हैं,
1: पेड़ हैं जी,
0: बरसों से इन पहाड़ों पर सजे हुए हैं।
1: जी जी जी।
0: तो इनका ख्याल रखना ये हम सब का फर्ज बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका ख्याल तो हमें फर्ज बनता है और इसका ख्याल हमें रखना चाहिए, लेकिन जो देवदार के पेड़ होते हैं हर में काम में आते हैं, कई बार हम जब पूजा हवन करते हैं तो सबसे पहले जो है देवदार की लकड़ियां जो है इस्तेमाल में लाई जाती है पूजा हवन में, तो इसलिए हमें इनका जो है बिल्कुल कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा पेड़ जो है काम में आ जाता है।
0: और सबसे बड़ी बात है राकेश जी, देखिए अब तो बरसात का मौसम है और हिमाचल में बड़ी बारिश हो रही है, तो जब गर्मी का मौसम होता है, जब बारिश नहीं होती है, तो ऐसे में जंगलों को आग लगने का खतरा लगा रहता है ना, तो उस खतरे को अगर हम भांप लें समय पर, या हमें पता चल जाए, तो हमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, वन विभाग को बताना चाहिए, क्योंकि ये संपदा है, वन संपदा हमारी, इसे सहेज के रखना हमारा काम है,
1: हमारा काम है। जी
0: जी। तो सांस की आस केवल पेड़ों के पास, तो पेड़ जितने हमारे आसपास होंगे, हमारी सांस उतनी ही महकेगी, शुद्ध रहेगी, क्या कहते हैं राकेश जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: सांस लेने लगे
1: ये, बिल्कुल बिल्कुल लेने लगे।
0: जी, शुक्रिया आपका बात करने के लिए इस प्रोग्राम में।

हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है और आज हम पेड़ों की बात कर रहे हैं कि सांस की आस केवल पेड़ों के पास, इसके बारे में आपने बताना है, यानी पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सांस का आना जाना, यही तो जीवन है और इन सांसों का आधार है हमारे पेड़, हरे भरे वृक्ष। इसी पर आज बात हो रही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दूरदर्शन पर जो प्रोग्राम दिखाए जाएंगे आज हरियाणा दूरदर्शन पर, दूरदर्शन हरियाणा पर, उनके

0: बारे में बता दें, एक प्रोग्राम होता है हरियाणा डायरी, साप्ताहिक राजनीतिक और सांस्कृतिक खबरों की सुर्खियां। शाम बाद दोपहर 3:30 बजे ये प्रोग्राम आप देखेंगे। महफिल प्रोग्राम होगा, गीत, गजल, मुशायरा, कवि गोष्ठी पर आधारित ये प्रोग्राम है महफिल, 4:00 बजे आप देखेंगे। और चंडीगढ़ दर्पण समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर आधारित है ये प्रोग्राम 4:30 बजे। सरकार आपके द्वार प्रोग्राम, केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित ये प्रोग्राम 5:00 बजे। हेल्थ शो फोन इन प्रोग्राम, स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्यक्रम 5:30 बजे आप देखेंगे। तो ये हैं खास प्रोग्राम दूरदर्शन हरियाणा के आज के लिए। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। पहले यहां छोटा सा एक अंतराल, अभी लौटते हैं।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: वेलकम बैक दोस्तों, सांस की आस केवल पेड़ों के पास। चलते हैं अपने श्रोताओं के पास। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, आज तो कमाल कर दिया आपने।
2: हाँ सर, आज लगातार कोशिश करता रहा मैं, हर बार आपका यही होता था कि आप लास्ट में क्यों बोलते हैं।
0: हाँ, जी। आज तो आपने मैदान मार लिया। और अपने बारे में बता दीजिए।
2: जी सर,
0: अपने बारे में।
2: हाँ सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट गोपालपुर से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ।
0: जी नेगी जी, परिवार ठीक ठाक है?
2: हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत सब खुश हैं और मौसम भी बहुत बढ़िया है सर।
0: अब बारिश काफी हो रही है, सड़कें बंद हैं हिमाचल की, बहुत सारी प्रभावित हुई हैं।
2: हाँ हाँ सर, वो तो हर साल का ही यहाँ पर जो आपदा का जो चक्कर है वो हर साल ही शुरू हो गया है। कुछ ये जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, जो पहाड़ों पर जो लगातार जो पेड़ों की बर्बादी और जल जंगल जमीन किसी की परवाह किसी ने नहीं की, तो ये मतलब मैं तो ये कहूंगा जो पेड़ों की आप बात कह रहे हैं कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।
0: जी जी जी जी,
2: तो ये सर लकड़ी इतनी ज्यादा जरूरी है, ये जंगल हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी है, इनका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर भारत के फेफड़े हैं हिमाचल प्रदेश के जंगल सर।
0: जी सही कह रहे हैं।
2: तो सर ये इनको इनको जिंदा रखना जो है हमारा एक नैतिक कर्तव्य है और आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि प्राणी जगत में बौद्धिक क्षमता जो है ना सर वो मनुष्य के पास ही है, तो हमारा ये एक नैतिक कर्तव्य है कि अगली पीढ़ियों के लिए हम जो है वो इस वन संपदा को सुरक्षित और संरक्षित करने की हर संभव कोशिश करें। क्योंकि ये चीज देखी गई है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जड़ी बूटियां पेड़ पौधे जो है लुप्त प्राय हो रहे हैं हम लोगों की गलतियों की वजह से।
0: जी
2: क्योंकि वन महोत्सव तो मनाते हैं, उन पेड़ों का संरक्षण करने की कोशिश नहीं करते और प्रकृति का जो वैज्ञानिक जो दोहन जो हो रहा है तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा एक समस्या खड़ी हो रही है पहाड़ों पर जंगलों में, इन्हीं पेड़ों की वजह से इन्हीं जंगलों की वजह से आप लोग टूरिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में आते हैं, गर्मियों में ठंडक महसूस करते हैं। तो ये इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों को जो है वो सोचना चाहिए और ये जो जंगलों की वजह से जो हमारी पहाड़ियां चोटियां जो हमारे जो ग्रेट हिमालय जिसको कहते हैं ये चाहे वो शिवालिक का क्षेत्र है, तो इनकी सबकी महत्व जो है वो सिर्फ इन पेड़ पौधों की वजह से है।
0: अच्छा नेगी जी, नेगी जी, नेगी जी, नेगी जी, नेगी जी, नेगी जी, नेगी
2: जी, जी सर, जी सर,
0: थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, मोड़ आ गया, मोड़ आ गया, अब मोड़ पे थोड़ा रुकिए। मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने ये बताया सबके लिए, आप अपने गांव में, अपने घर के आंगन में या आपके साथ जो लगता जंगल है उसके आसपास आप किस तरह से ख्याल रखते हैं अपने स्तर पर?

0: सर अगर मैं अपने घरों के आपकी स्थिति बताऊं तो पहले बचपन में जो थे वो हम लकड़ी जलाते थे, इन पेड़ों की कांट छांट करते थे, लेकिन अब एलपीजी गैस जो घर घर पहुंची है इसकी वजह से पेड़ जो जंगल जो है हमारे घरों तक पहुंच गए हैं। तो हम तो इनको आग लगने से बचाने के लिए ही सिर्फ उनकी पत्तियों को या उनको जो है वो उनका निष्पादन करते हैं, लेकिन स्थिति जो है वो जो गांव गांव में जो जंगल जो बन गए हैं उसकी वजह से भी एक समस्या खड़ी हो गई है सर।
1: देखिए तो वो ये समय समय के समय तो, के समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ साथ जो है बोझ पड़ता है धरती माता पर भी, और बहुत सारे उसके कारण हैं, लेकिन उन कारणों पर ध्यान देते हुए हमें जहाँ जहाँ जिस मोड़ पर मौका मिलता है पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए और पेड़ों को लगाना चाहिए।
0: सर एक चीज मैं जरूर कहना,
1: अगर एक रास्ता
0: व्यापारी लोग आते थे उनको रोकने में हमने बहुत एक सहयोग किया है पंचायतों का, और जो वन बचाओ जो हमारी संरक्षण समितियां बनी होती हैं, जबकि हमारे यहाँ की बनस्कर होती थी तो उसका खात्मा हो गया, वन हल्दी रतन जोत वन ककड़ी अतीस तेज पत्थर ये पथराड़ा और ये जो मुस्क वाला और ये जो सालम पंजाब वगैरह ये सब जड़ी बूटियां थी सर, और ये जड़ी बूटियां जो है वो लुप्त प्राय होती चली जा रही हैं, इनको बचाने के लिए हम लोग
1: बिल्कुल, जो बिल्कुल, वो इनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और पर्यावरण जो मंत्रालय है राज्य सरकार के साथ मिलकर विशेष अभियान और विशेष उपाय भी करता है। नेगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए इस प्रोग्राम में, आप हमारे एक जागरूक नागरिक हैं और हमेशा से आप अच्छी जानकारी जो है वो साझी करते हैं, धन्यवाद बात करने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार सर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: वेलकम बैक दोस्तों, सांस की आस केवल पेड़ों के पास, ये है हमारा आज का टॉपिक। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो
1: जी।
3: जी नमस्कार, मैं योगेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: योगेश जी शिमला आ गए?
3: जी हाँ, शिमला से बात कर रहा हूँ।
1: आप तो करसोग में थे?
3: जी हाँ, मैं शिमला आ चुका हूँ, एक हफ्ता हो गया है।
1: जी। अच्छा, तो देखिए हमें याद है आप करसोग मंडी के रहने वाले ना?
3: जी बिल्कुल, आपको जी, जी। तो सब कुछ याद रहता है।
1: तो आजकल शिमला में हैं आप?
3: जी हाँ शिमला में हूँ।
1: जी। अच्छा जी। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में?
3: जी टॉपिक तो आपका बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि हर सांस की आस तो पेड़ ही है, क्योंकि पेड़ है तो तभी हमारा जीवन चल रहा है, चाहे ऑक्सीजन देने की बात हो या वातावरण में हमारे द्वारा छोड़ी गई हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उनको ऑब्जर्व करने की बात हो, उनको अवशोषित करने की बात हो, तो पेड़ों की भूमिका तो सबसे बड़ी है यहाँ पर। तो हमारा जीवन पेड़ों के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। जी
1: हम सोच ही नहीं सकते।
3: जी
1: हम सोच ही नहीं सकते बिना पेड़ों के,
3: नहीं सकते क्योंकि जो।
1: और आपको एक एक आपसे साझी करें जानकारी अपने श्रोताओं से भी।
3: जी कर ली।
1: हमारे यहाँ सेक्टर 9 में ना कुछ साल पहले एक पेड़ उखड़ गया था चंडीगढ़ में।
3: जी,
1: इसका भारी भरकम तना जो है सड़क पर आ गिरा।
3: जी,
1: लेकिन आधी से ज्यादा जड़ें कायम रहीं, जड़ें उसकी कायम रहीं, तना सड़क पर आके गिर गया जो भारी भरकम था। अब प्रशासन ने क्या किया कि प्रशासन ने इस पेड़ को पूरी तरह उखाड़ने की बजाय केवल सड़क पर गिरे तने का हिस्सा काट दिया।
3: अच्छा
1: ठीक है। और कुछ साल बाद बचे हुए तने से छोटी छोटी टहनियां निकल आईं। अब ये पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। ये छोटा सा प्रयास होता है, एक सोच होती है कि नहीं, गिराना काटना तो आसान है, निकालना आसान है, लेकिन उसे फिर से जीवन देना वो अपने आप में बड़ी बात होती है।

0: तो इस पेड़ को नया जीवन मिल गया।
1: देखिए बस प्रयास छोटा सा था, सोच छोटी सी थी, बस उस पेड़ को बचाना है, और अब वो पेड़ बड़ा हो गया होगा।
0: बिल्कुल, अब देखिए बहुत सारे पेड़ जो हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं, सियाने हो गए हैं सेवा करते करते, है ना। अब उनको भी सहारा दिया जा रहा है, एंगल लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो शहर की हेरिटेज है। तो शहर को बनते संवरते आगे पहुंचते देखा है इन पेड़ों ने, है तो इन पेड़ों को भी संभालने का काम हो रहा है, एंगल लगाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, इस ये कहानी बताने का मतलब ये है कि छोटी छोटी छोटी जो हमारी कोशिशें होती हैं, प्रयास होते हैं, वो इस तरह से हरा भरा रंग ले आते हैं। तो आपको शायद मैंने बीच में रोक दिया था, आप बात कर रहे थे
1: जी।
0: हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं।
1: मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने बात की पेड़ों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी क्यों है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि पर्यावरण को, प्रकृति को और पेड़ों को नष्ट किसने किया है? मनुष्य ने, मानवों ने, इंसानों ने। तो आप देखिए,
0: अब जो हो गया वो तो हो गया, अभी भी संभल जाओ,
1: अभी भी संभल जाओ,
0: अपनी सांस की जो रफ्तार है, इसका जो आना जाना है, ये कायम रहे, दुरुस्त रहे, इसके लिए पेड़ जहां जहां हैं, एक तो उन्हें संभालते रहें, और जहां जहां मौका मिलता है, कभी कभी, जब भी कभी, तो एक पेड़ अपने हाथ से एक पौधा जरूर लगाएं।
1: जी बिल्कुल।
0: देख, आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे लिए क्या छोड़ के गए भाई।
1: वो आने वाली पीढ़ियां हमें शाप देंगी
0: जी,
1: हमें कोसेंगी वो कि क्या करके छोड़ दिया इस धरती को, पेड़ों से रहित कर दिया।
0: अच्छा योगेश भाई, एक बात बताइए, आपके गांव, जहां गांव है, आपका घर है, उसके आसपास किस तरह से माहौल है पूरा पेड़ों को लेकर?
1: जी वहां पर पेड़ तो अभी देखिए बहुत सारे पेड़ है, मेरा गांव जंगल के पास ही है।
0: क्या बात है, हाउ लकी यू आर।
1: कई प्रकार के पेड़ है वहाँ पर, बांस के पेड़ है, देवदार के पेड़ है।
0: अच्छा।
1: और भी पेड़ होते हैं जो हमारे वहाँ के लोकल लगते हैं।
0: और कौन कौन से पेड़ लगते हैं?
1: देवदार है, काफल होता है, काफल आपने सुना होगा, प्लांश होता है
0: जी,
1: जो जिसमें फूल लगते हैं, रोडोडेंड्रन जिसको कहते हैं,
0: बुरास,
1: हमारे
0: बुरास जिसका शरबत बनता है,
1: स्टेट,
0: लाल लाल फूल होते हैं उसके,
1: लाल और गुलाबी फूल होते हैं,
0: बड़े प्यारे प्यारे होते हैं।
1: तो देवदार अच्छा, पेड़ होते हैं।
0: हाँ हाँ, ये बताइए, आप जब अपने गांव में या आपके परिवार वाले इस ये जो वन संपदा है, जहां तक वो उसका ख्याल रख सकते हैं, कितना ख्याल रखते हैं?
1: जो ख्याल तो रखना, जागरूकता की
0: नहीं, वो तो जंगल का काम तो वन विभाग का है, लेकिन अपने जो आसपास है, अपने गांव में, अपने घर आंगन में, या कुछ ऐसी कुछ बताना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे?
1: जी मैं बता सकता हूँ कि हमारे आसपास खेत खलियानों में लोग पेड़ लगाते हैं, फलदार वृक्ष लगाते हैं, उससे तो दोहरा लाभ मिल जाता है, क्योंकि पर्यावरण के लिए भी जरूरी होता है, और उनकी आर्थिक स्थिति और आमदनी के लिए भी वो पेड़ एक सहारा बन जाते हैं।
0: जी जी,
1: तो ये तो बड़े पैमाने पर हमारे वहाँ चलता है, हर जब सर्दी का समय आता है तो सेब की प्लांटिंग होती है बहुत बड़े स्तर पर।
0: तो योगेश भाई, आपसे बातें करके अच्छा लगा। आजकल शिमला में क्या कर रहे हैं?
1: जी शिमला में हूँ, डीएलएड।
0: जी
1: डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
0: अच्छा, वो कर रहे हैं
1: जी।
0: चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, हरियाली आपके जीवन में बनी रहे, हरियाली की डगर पर आप चलते रहे। शुक्रिया बात करने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: आप भी गाना प्ले कर दें, बहुत देर हो गई
1: जी, गाना प्ले कर दीजिए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्वागत है दोस्तों प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में। सांस की आस पेड़ के पास, केवल पेड़ों के पास, ये है हमारा आज का टॉपिक। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
1: जी।
2: गुड मॉर्निंग अनिल जी।
1: गुड मॉर्निंग जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: किरण बोल रही हूँ कुफरी से।
1: हाँ जी किरण जी, कैसे हैं
2: सर? बढ़िया।
1: कुफरी का मौसम कैसा है
2: सर? आज धूप लगी है।
1: आज धूप लगी है। हेलो, मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है, इनसे बात हो नहीं पा रही है किरण जी से। कुफरी से ये हमें फ़ोन करती हैं, कुफरी की हमारी ये श्रोता हैं। तो किरण जी, हो सके तो फिर से आप ट्राई कीजिएगा। फिलहाल हमारे अगले श्रोता ऑनलाइन हैं। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो
1: जी, रेडियो सेट को, अपने रेडियो सेट को पहले आप धीमा कीजिए। मेरी आवाज आपके रेडियो से आ रही है।
3: हेलो,
1: अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
3: पवन
1: जी।
3: पवन, पवन,
1: पवन जी।
3: हाँ जी,
1: हाँ जी, पवन जी।
3: हाँ जी,
1: हाँ जी। जब आप फोन करते हैं तो इसको पहले ही आप रेडियो को थोड़ी देर के लिए बंद कर लें या थोड़ा धीमा कर लें?
3: थोड़ी थोड़ी।
1: उससे क्या होता है कि जो आपका बहुमूल्य समय है वो खराब नहीं होता, अब जल्दी जल्दी से बात होती है। तो पवन जी बताइए, किस ओर बह रही है आज पवन?
3: आजकल तो मौसम बहुत ठीक ठीक है, बढ़िया।
1: अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक, इसके बारे में आपको मालूमात है, क्या टॉपिक है?
3: हाँ हाँ, पता है, पता है
1: जी। कहिए क्या कहेंगे पवन जी?
3: देखो बीजी, घर घर इतना है कि है भी, अब मैं हूं भी घर घर में रहा, अच्छे घर राम आप जो कि नन्ही घर का बनाने बंद कर दूं।
1: ये कितना हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी सड़का बनाने लई बंद करने लई तो टॉपिक ते गल नहीं कर रहे ऐसी। देखो हर पवन जी, हर एक चीज चो हर एक नवा रस्ता निकल आंदा है। सड़क नहीं होनगियां फिर तुसी कहोगे जी सड़क नहीं है, साढ़े घर तक पहुंचने का रस्ता नहीं है, सानू देर बहुत लग रही है। ये पवन जी, पवन जी एक मिनट, पवन जी ये उन्होंने पूछो जिन्हां दे घर सड़क पहुंचती है, जिन्होंने सड़क नवीं मिली ने, जिहड़े दो घंटे का सफर एक घंटे च कर रहे ने, ये उन्होंने पूछो। सड़क ना कढ़ना कोई तो समस्या का हल नहीं है। जिम्मेवारी पवन जी, जड़ा सी टॉपिक कह रहे हैं कि सांस की आस केवल पेड़ों के पास, तुसी ता हाईवे ते निकल गए।
3: नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा
1: हाँ तुहाडी। वैसे पवन जी आवाज जड़ी साफ नहीं आ रही है, मैं कोशिश कर रहा समझन दी, तुसी कह की रहे हो? अभियान पूरा कर दिया पईयां ने या जिहड़ी इस च शामिल ने, उन्हां नाल कॉन्टैक्ट कर लो। जरूरी नहीं घर दे आस पास ही जगह मिले, धरती दे किसी कोने ते मिल जाए। साडे शहर दे, साडे कस्बे दे, साडे पिंड दे, साडे समाज दे, देश दे किसी हिस्से जगह मिल जाए।
3: हाँ देखो बीजी, गल देखो अजकल

0: चंडीगढ़। जी नाम बताएं, जगह का नाम बताएं।
1: अनिल जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: सर सुशील शर्मा बोल रहा था ठियोग हिमाचल से।
0: जी ठियोग हिमाचल से सुशील शर्मा जी।
1: जी सर जी सर
0: सुशील जी क्या हाल है?
1: ठीक है अनिल जी।
0: बड़े प्यार से बड़ा मीठा बोलते हैं
1: आप आपसे मीठा तो बोल नहीं सकते, आपसे ही सीखते हैं
0: नहीं नहीं
1: जो
0: नहीं
1: भी।
0: नहीं ऐसी कोई बात नहीं।
1: जी सर जी
0: अच्छा
1: सर
0: तो सुशील जी
1: जी सर
0: कैसा मौसम है? सुना है रास्ते कुछ बंद हैं?
1: जी सर अभी बारिश 2-3 दिन अच्छी बारिश हुई सर ना। कुछ हिमाचल में अब 2023 और 2025 में जैसी आपदाएं आई थी, काफी जो है भूस्खलन वगैरह, उसमें
0: जी जी जी
1: सैकड़ों बहुमूल्य जाने भी गई। तो इस बार भी शुरुआत में ही काफी मतलब बरसात जो है अपना रौद्र रूप
0: और बरसात का
1: धारण।
0: देखिए, बरसात का अब मूड का पता नहीं चलता है, कहीं तो इतनी बरस जाती है।
1: जी
0: अब
1: सर जी
0: वो जो पुणे में एक हादसा हुआ,
1: सर जी सर
0: उसमें देखने की बात यह है कि अगर एक हफ्ते में 100 mm बारिश होनी है
1: जी
0: तो
1: सर
0: एक ही दिन में वो 60 mm हो गई।
1: जी सर
0: अब ऐसे में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोई भी व्यवस्था होगी,
1: जी सर
0: एक
1: जी सर
0: एक थोड़ी देर के लिए तो हिलेगी डुलेगी ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: हाँ तो ये कुछ चीज़ों पर बस नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात से पहले हम ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, काम कर सकते हैं संभावनाओं पर।
1: जी सर
0: तो आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे कि सांस की आस केवल पेड़ों के पास?
1: जी सर ये तो बिल्कुल ज्वलंत ये है, और हमारे को बिल्कुल पेड़ लगाने ही नहीं चाहिए सर, बचाने भी चाहिए। लगा तो लेते हैं हम लेकिन केयर करते नहीं उसकी।
0: हाँ
1: अब 5 साल बाद देखो जो अपना आपने पेड़ लगाया है उसको उसकी देखभाल भी करो बच्चे की तरह, कि भाई चला है कोई है कोई कोई आग लगा रहा है कोई, वो भी तो आपका दायित्व तो है।
0: और
1: अब
0: बच्चे की तरह
1: सरकार सरकार
0: पे
1: या प्रशासन के
0: हाँ
1: भरोसे हम कब तक सर बैठे रहेंगे। जी
0: नहीं, वो अपना काम है करते जाते हैं।
1: सर जी सर
0: अब हमारे कस्बे में अगर पेड़ लगा के गए हैं,
1: जी सर
0: हमारी आंखों के सामने लगा है,
1: जी सर जी
0: तो
1: सर
0: कभी कभार हम उसकी भी सुध ले लें।
1: जी सर जी सर बिल्कुल।
0: वो जब बड़ा होगा फिर छाया तो हम लेंगे, फल भी हम
1: दायित्व
0: लेंगे।
1: तो हमारा है सर, दायित्व तो हमारा
0: और
1: है।
0: ये जो पेड़ हैं, जो जवान पेड़ हैं, वो तो बेचारे अपने आप को फिर भी संभाल लेते हैं, लेकिन जो हमारे पेड़ जो हैं बुजुर्ग हो गए हैं,
1: जी सर जी सर
0: बूढ़े हो गए हैं, उनको संभालना और भी जिम्मेदारी है हमारी,
1: जी सर जी सर जी
0: तो अपने
1: सर
0: परिवार की
1: यहाँ
0: तरह इनका ख्याल रखना पड़ता है।
1: जी सर जी सर यहाँ आगजनी की घटनाएं हैं सर ना, इस पे तो कुछ तो लापरवाही और इससे जो है ना, और कुछ जानबूझकर
0: हाँ कुछ ये घर्षण भी होता है गर्मी में ना, जो
1: नहीं
0: सूखे
1: सर
0: पत्ते
1: इस
0: हैं।
1: वो तो चलो मान सकते हैं कि चलो, लेकिन जो लापरवाही या जानबूझकर जो है आगजनी की घटना हो रही है उससे बड़ा विनाश हो रहा है सर।
0: बस जो अगर कोई पकड़ा गया तो भाई सजा भी अच्छी खासी होती है फिर, और ऐसे में
1: सजा तो होनी चाहिए सर जब तक
0: हमें
1: कानून का डर
0: जागरूक
1: ना हो
0: रहना
1: ना,
0: चाहिए।
1: जब तक
0: तो
1: कानून का डर नहीं है हमारी भारतीयों की
0: हाँ
1: जो है एक इस तरह का वो है टेम्परामेंट जो है, जब तक कान थोड़ी सख्ती ना हो ना तब तक सुधरते हम सुधरते
0: बिल्कुल
1: ही नहीं
0: बिल्कुल
1: सर।
0: बिल्कुल। और सुशील जी देखिए, पेड़ों के साथ, पेड़ों के आसपास जो हम रहते हैं,
1: जी सर
0: और चाहे उनसे हम दूर भी रहते हैं,
1: जी सर जी सर
0: लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी दूर होते हुए भी निभाते हैं।
1: जी सर जी जी बिल्कुल
0: तो पेड़ों के पास ही हमारा जीवन है, और इस जीवन को बरकरार रखने के लिए पेड़ों का होना,
1: जी
0: लहलहाते
1: सर
0: रहना,
1: जी सर
0: है
1: धन्यवाद
0: ना, ये हमारे लिए जरूरी है। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
1: सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।

0: ठंडी ठंडी बयार, ये हवाएं, मदमस्त हवाएं, मस्ताना मौसम, सब हमारे पेड़ों की ही तो देन है। हेलो चंडीगढ़।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: पंचकुला सेक्टर मार्केट से फजलू खान।
0: फजलू खान, क्या हाल चाल है?
1: सर अल्लाह का शुक्र है। अगर लाइव देखना तो सर मेरे पास में है बंदा।
0: अच्छा,
1: देखो सांस है तो सारा कुछ है।
0: जी जी जी जी, जी
1: सारा कुछ मेरे हिसाब से कम मेरे सामने ये 15 पेड़ हैंगे।
0: और क्या बात है, क्या बात।
1: बहुत अच्छी मस्ती में, इतना अच्छा मजा आता है, सांस है। अभी अभी भी अभी भी कहना पड़ा जामुन का और पीपल का पेड़ लगाया है।
0: जामुन आज अच्छा भी लगाया है, जामुन का लगाया है।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी जी।
1: और यहाँ पे गिलो है मेरे सामने, इमली है,
0: क्या
1: बहुत
0: कुछ
1: अमल तराश है जो बहुत ज्यादा बंदे आते हैं लेने के लिए। और नंबर एक ये चीज है कि नंबर दो मेरे आज बेटे का जन्मदिन है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: शुक्रिया जी, मेहरबानी। तो इस वजह से मैं अपने आप में ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी कोई भी चीज यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मालूम ही है कि 10 साल हो गए लंगर चलाते हुए, और इतने आराम के साथ में बंदे खाते हैं और अपना रखे पेड़ों की छाया में सारा कुछ बैठते हैं।
0: जी फजलू भाई, हम आपको रोकेंगे क्योंकि प्रोग्राम का समय अब लगभग समाप्त हो
1: गया है।
0: आप प्रोग्राम के आखिर में पहुंचे, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना वादा पूरा किया। नमस्कार। तो दोस्तों, ये तो था आज का हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्ता लागू।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अगला प्रोग्राम यादों का

0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के 9वें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, आज यादों का कारवां में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में जाने माने संगीतज्ञ ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के संगीत सफर की कहानी उन्हीं की जबानी।
1: जिंदगी नामा, शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।
0: दोस्तों, आज जिंदगी नामा प्रोग्राम में हम संगीत के एक ऐसे जादूगर से उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें करेंगे जो अपने संगीत के सम्मोहन से देश और विदेश के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। संगीत की दुनिया में नए नए प्रयोग ये करते रहते हैं और इन्हीं प्रयोगों के बल पर इन्होंने हमारा परिचय करवाया मोहन वीणा जैसे अद्भुत वाद्य से।

0: जिंदगी नामा प्रोग्राम में आज हम जाने माने संगीतज्ञ ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी की जिंदगी से जुड़ी बातें करेंगे। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
1: जिंदगी नामा प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले बात आपकी परवरिश की, जिसने आपको संगीत की दुनिया में अपनी कला के जौहर दिखाने के लिए एक मजबूत आधार दिया, तो कहाँ हुई आपकी परवरिश, हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: मैं जयपुर का निवासी हूँ और जयपुर में हमारे 300 साल से संगीत की, शास्त्रीय संगीत की परंपरा चलती आ रही है। जब राजा महाराजाओं का समय था तब से ये गुणीजन खाने में मेरे पूर्वज थे। कवि पद्माकर जो फेमस थे, तो हम वल्लभाचार्य ग्रुप उसमें से हैं। और हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य संगीत और कला कविता लेखन ये सब कार्य हमारे जो कास्ट है वो करती, तो शास्त्रीय संगीत की परंपरा 300 साल से चलती आ रही।
0: जी पंडित जी, ये जो आपका संगीत का सफर है वो किस तरह से शुरू हुआ, और थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी मैं शुरू से ही संगीत की तरफ आकर्षित था, क्योंकि ये तो हमारा फैमिली ट्रेडिशन ही है, तो कहीं दूर दूसरे सब्जेक्ट को जाने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि घर का माहौल जो होता है वो शास्त्रीय संगीत के जो होते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा और घरानादार जो होती है वो तालीम वो चलती रहती है, उसमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। स्कूल में जितना टाइम मैं देता था उससे ज़्यादा टाइम संगीत को मैंने दिया, और फिर पढ़ाई के साथ साथ ये भी जारी रहा। और माहौल जो घर पे रहा वो ये रहा कि कहीं सितार की आवाज़ आ रही है, कहीं वायलिन बज रहा है, कहीं वोकल हो रहा है, तो इस तरह के माहौल में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग में और दिल में वो ध्वनियाँ बैठ जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरे फादर मदर जो ख्याल सिखाते थे, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, वो मेरे दिमाग में बैठता गया, और इस तरह से फिर धीरे धीरे ये संगीत का वो कहते हैं कि बीज वो परिपक्व होता गया।
0: जी पंडित जी, ये जो बतौर वोकलिस्ट आपने शुरुआत की, उसके बाद आप फिर सितार की तरफ बढ़े, तो क्या कारण रहे कि आपने गायन से अपना जो रुख है वो सितार की तरफ किया?
1: क्योंकि माता पिता दोनों ही वोकल, तो जब वो गाना गाते थे अब इसका रियाज चलता है घर पे, तो वो अपने आप से ऐसा लगता है कि ये तो हमको आ रहा है।
0: जी,
1: और जब वो स्टूडेंट को सिखाते थे तब हमको लग रहा है कि ये तो मुझे आता है। और वैसे भी संगीत में सीखने से पहले, सबसे पहले अगर आप कुछ भी वादन सीख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको गायन और तबला ये दो चीज जरूर सीखनी चाहिए।

0: ताकि आपको सुर और ताल की जानकारी हो सके। तो फिर सितार में तो मेरे पंडित रविशंकर जी से 1957 से संबंध, जब मैं 7 साल का था तब से भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से हमारे परिवार के संबंध, तो नेचुरली सितार की तरफ हम लोग सब मुखातिब हो गए, मेरे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी। तो इस तरह फिर सितार, फिर जब मैं करीब 15 साल का था तब एक टर्निंग पॉइंट आया, तब एक गिटार को मैंने देखा पहली बार, तो उस गिटार को मैंने सोचा इस पे कुछ मैं जरूर करूंगा, मेरे को वो थोड़ा सा मुझे अट्रैक्ट करता था वो कि इस पे कुछ करूं मैं। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए और उसको वीणा का रूप देना शुरू किया, उसमें तरब के तार लगाए, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स होते हैं वो हटा दिए और नए तारों की रचना करना शुरू किया। और इस तरह से फिर 1970 से मैंने कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया मोहन वीणा पर।
1: जी, इस तरह से आपने ये जो खूबसूरत और अद्भुत वाद्य यंत्र मोहन वीणा आपके हाथ में पकड़ी हुई है, आपने इसको इजाद किया, इसकी खोज की। पंडित जी, हमें पता है वो जर्मनी से एक महिला आई थी, उनसे आपने गिटार खरीदी थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक लेडी थी, यू आर राइट, वो जर्मनी से आई थी और वो गिटार पर शास्त्रीय संगीत सीखना चाहती थी, तो मुझे दोनों में इंटरेस्ट आ गया, लेकिन फिर अंत में गिटार को मैंने चुना और उसका भारतीयकरण किया।
1: जी, गिटार का भारतीयकरण करके आपने मोहन वीणा बनाई, और ये जो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मोहन वीणा बजाते हैं आपने बताया, ये भी बहुत चमक दमक रहा है, अब किसी खास चीज का बनाया लगता है।
0: आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मुझे लगा कि मेरे हाथ में जो जिससे मैं प्ले करूंगा वो इस तरह का कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए जिसका ग्रिप बराबर है। तो स्कूटर पहले था एक हमारे पास में, उसका एक्सेल का वो एक रॉड होती है उसमें, वो पड़ी हुई थी, उसको उठाया मैंने, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। फिर ये घर की जो सांकड़ होती है वो सांकड़ को मैंने काटा, सांकड़ को काट के फिर मेरी जो स्टील रॉड बनी उससे बजाना शुरू किया।
1: जी, बहुत ही खूब। पंडित जी, आपने इस खूबसूरत अद्भुत वाद्य यंत्र मोहन वीणा की खोज की, तो कुछ हमारे श्रोताओं के लिए अपनी उंगलियों का जादू चलाएं, इस अद्भुत मोहन वीणा से संगीत की लहरें उठाएं, कुछ सुनाएं हमारे श्रोताओं को।
0: जी लीजिए, मैं जरूर आपके लिए।

0: बहुत ही खूब। पंडित जी, कई बार हम नई नई जब प्रयोग करते हैं, दुनिया से कुछ अलग हटके करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो क्या आपको भी इस तरह का कोई संघर्ष करना पड़ा मोहन वीणा को आगे बढ़ाने में?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्चुनेटली मुझे इतना कुछ सामना नहीं करना पड़ा। ये जरूर है कि कोई नई चीज होती है तो धीरे धीरे एस्टेब्लिश होती है, उसमें टाइम लगता है। क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगा कि ये जो है, क्योंकि शेप इसकी गिटार की है तो ये जरूर वेस्टर्न म्यूजिक से कुछ इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन मेरा संगीत तो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, तो वो बिना सुने ही अपनी धारणा बनाया करते थे कुछ लोग। लेकिन जब उन्होंने मेरा 2 घंटे का परफॉर्मेंस सुना, तब उनको पता चला कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का शुद्धतम रूप प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मान गए फिर।
0: जी भट्ट साहब, आपकी जिंदगी से जुड़ी बातों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ हम आपकी पसंद का एक गीत आपके साथ साथ अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?

शायद फिर से जन्म में मुलाकात।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी नामा। और आज इस कार्यक्रम में हम जाने माने संगीतज्ञ ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी से उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे हैं। पंडित जी, आपने ग्रैमी अवार्ड हासिल किया, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मैं अमेरिका के टूर पे था 1992 में, और एक रिकॉर्डिंग कंपनी, उन्होंने अप्रोच किया कि साहब एक बहुत फेमस गिटारिस्ट हैं राय कूडर, वो आपके वादन से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, तो कुछ ना कुछ हम रिकॉर्डिंग आपकी करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक दिन था, तो एक दिन के लिए मैं गया लॉस एंजलिस के पास और वहाँ पे शुरू की बिना किसी रिहर्सल के, बिना किसी नोटेशन के, बिना किसी प्री डिसाइडेड म्यूजिक के। उसको मैंने कहा कि हमारा जो संगीत है, भारतीय संगीत, वो इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, हम लोग लिखते नहीं हैं म्यूजिक। खैर, तो इस तरह से हम वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मैं रात को शुरू हुई थी 12 बजे, और सुबह 4-5 बजे तक हम रिकॉर्डिंग करते रहे, और वो बिना किसी रीटेक के, बिना किसी एडिटिंग के, वो ऐसे के ऐसे ओरिजिनल रिलीज किया गया वो रिकॉर्ड। तो उसमें क्या अकॉस्टिक साउंड था हमारा, कोई ऐसा जैसे अमूमन जो रिकॉर्डिंग्स उस समय निकला करती थी 90s में, वो बहुत हैवी म्यूजिक हुआ करता था। तो ये जब आया तो लोगों को थोड़ी सी एक सुकून मिला इसमें कि ये एकदम सिंपल म्यूजिक है, और कहाँ से आ रहा है ये, इम्प्रोवाइजेशन कैसे हो रहा है, वो सुनने से पता चल जाता है कि ये फिक्स म्यूजिक नहीं है। एक फिक्स म्यूजिक होता है, वो अपने आप में पता चल जाता है कि ये पहले से रिहर्सल किया हुआ, लिखा हुआ, प्री डिसाइडेड म्यूजिक। लेकिन जो इम्प्रोवाइजेशन होता है, उसमें जो पहचान जाते हैं, वो पहचान गए कि ये बिल्कुल अलग रिकॉर्डिंग है। तो वो पिकअप किया उसने, और हमारा उसमें काफी अच्छा उसको रेस्पॉन्स मिला, काफी अवार्ड्स मिले, और अल्टीमेटली फिर ग्रैमी अवार्ड मिला 94 में वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में।
0: जी, और इस तरह से आपने हिंदुस्तानी संगीत का, भारत का नाम रोशन किया ग्रैमी अवार्ड हासिल करके। पंडित जी, माता पिता का योगदान कैसा रहा आपके संगीत के सफर में?
1: माता पिता का योगदान ये है कि जो भी आज संगीत है रग रग में, वो उन्हीं की बदौलत है, हर सुर में वही बसे हुए हैं, उन्हीं की मैं याद करता हूँ।
0: जी पंडित जी, हमने सुना है आप लोग आज भी ज्वाइंट फैमिली कल्चर में रहते हैं, और बहुत खूबसूरती से ये जो ज्वाइंट फैमिली कल्चर है उसको निभा रहे हैं।
1: हमारे जयपुर में एक अभी भी संयुक्त परिवार की प्रथा है, मेरे जो घर है उसमें 4 ब्रदर्स हैं, उनकी पूरी फैमिली रहती है, उनके पुत्र और उनके पुत्र और उनके पुत्र, हम लोग 4 पीढ़ी एक साथ वहाँ पर रहती हैं। तो उसमें अलग अलग भाई अलग अलग विधा में वो होते हैं, क्योंकि संगीत तो पूरी तरह से विद्यमान है ही वहाँ, तो कोई सितार है, कोई वायलिन है, कोई वोकल है, और मैं मोहन वीणा। तो हमारी 4 फैमिली

0: साथ रहती हैं, इसमें यह रहता है कि एक तो जो घर का जो माहौल होता है और जो बच्चे बड़े होते हैं, वो अगर आप चौक में से इस तरह सब जाएंगे तो इधर आपको वायलिन सुनाई देने लग जाएगा, इधर जाएंगे तो आपको सितार सुनाई देने लग जाएगा, तो वो उसका जो लालन पालन होता है बच्चे का, वो शुरू से उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो संगीत की परंपरा फिर आप से आप शुरू हो जाती है। तो अभी भी हम लोग उसी संयुक्त परिवार प्रणाली को अपनाए हुए हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ संगीत करते हैं और स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, आनंद करते हैं।
1: जी बहुत खूब। पंडित जी अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कितने बच्चे हैं आपके, क्या वो भी आपके नक्शे कदम पर चलकर संगीत की ये जो परंपरा है आपके परिवार में उसको आगे बढ़ा रहे हैं?
0: मेरा बड़ा पुत्र सलील भट्ट वो जो है, उसने मोहन वीणा को लेकर ही एक नया और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सात्विक वीणा के नाम से उसने इजाद किया है। तो मोहन वीणा में क्या होता है कि ज्वाइंट होता है, एक तो बॉडी होती है और एक फिंगर बोर्ड होता है, बीच में ज्वाइंट होता है। तो एक बार मैं मॉन्ट्रियल में कनाडा में सफर कर रहा था तो वो फ्लाइट में जोर से पटका तो वो ज्वाइंट खुल गया उसका, वो स्ट्रिंग का जो पुलिंग होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है उसका, तो वो पुलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो ज्वाइंट फट गया, टूट गया और वो ऐसे हो गया। तो वो थोड़ी मुझे दिक्कत हुई थी, एक दिन उसको रिपेयर कराया, फिर ये सब टाइम लगा 24 घंटे। तो उसका दिमाग में ये आया कि ये अगर ज्वाइंट ना हो तो ये रिस्क ही नहीं रहेगा, फिर कितना ही पटकर एयरलाइन वाले कितना ही पटके जोर से। तो उसने बिना ज्वाइंट के एक वन पीस ऑफ वुड ऐसा किया उसने और उसका नाम सात्विक रखा। दूसरा मेरा छोटा पुत्र है सौरभ। सौरभ इज ए कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है और स्टूडियो साउंड इंजीनियर है, वो उसका स्टूडियो है, तो वो इस तरह का म्यूजिक कंपोजिशन का वर्क कर रहा है।
1: जी पंडित जी बहुत ही अच्छा है, आपके बच्चे आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, संगीत की आपकी ये जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पंडित जी हमने सुना है आपका पोता जब छोटी उम्र का था तब वो धुन सुन के 45 राग जान लेता था।
0: मेरा ग्रैंडसन बहुत छोटा था सात्विक, तो करीब 3.5-4 साल का था, 4 साल का जब था तो मैं उसको अपनी गोद में बैठाता था और उसको ऐसे बजा कर सुनाता था, उससे कहता था ये राग यमन है, इसमें नी रे गा म म ग रे नी सा, नी रे गा म प म ग ग स नी रे सा, ये स्वर आते हैं, नी रे गा म द नी सा रे सा नी द प म द प म ग रे ग स नी रे सा नी रे म म ग रे नी रे सा, ये मैं उसको बजा के बार बार बार बार एक ही चीज और कहता था ये क्या है यमन, ऐसे ऐसे करके एक दिन दो दिन बाद फिर मैं नया राग लेता था कि ये कौन सा है, तो ये तोड़ी है, दूसरा क्या है ललित है, तीसरा क्या बिहार, इस तरह से मैंने उसको, और सलील ने भी मदद की थी, तो इस तरह से वो उसने 45 राग पहचाने थे जब वो 4.5 साल का था, इसलिए वो उसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया कि 4.5 साल का बच्चा और कोई न्यूएंसेस बजाए और वो पहचान जाए कि ये कौन सा राग है, इसलिए उसका नाम उसमें आया था।
1: जी बहुत ही खूब। इसे कहते हैं बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बहुत ही बढ़िया पंडित जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही मजा आ रहा है, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। समय है आपकी पसंद का एक और गीत आपके साथ साथ अपने श्रोताओं को सुनवाने का, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर

0: FM 107.2 MHz पर आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी नामा। और आज इस कार्यक्रम में हम जाने माने संगीतज्ञ ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी से उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे हैं। पंडित जी, आज भारत में जो शास्त्रीय संगीत की स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं उनमें से हूँ जो नेगेटिव विचारधारा नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि आजकल इट इज गोल्डन एरा फॉर एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, चाहे वो कोई स्ट्रीम हो, चाहे फ्यूजन हो, चाहे कुछ भी म्यूजिक हो। आज हर म्यूजिक के लिए एक गोल्डन टाइम है, मैं मानता हूँ इस बात को। इतना एक्सपोजर पहले नहीं था, आज इंटरनेट है हमारे पास में, यूट्यूब है, आज फेसबुक है, आज सब तरह की फैसिलिटीज एक आम आदमी के पास मौजूद है। एक आम आदमी अपना मोबाइल उठाता है और अच्छे से अच्छा संगीत सुनने को उसके पास उपलब्धता है। पहले ये, आज के 25 साल पहले ये उपलब्धता नहीं थी। सुनना बहुत मुश्किल काम था, रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंड करते थे। आप मोबाइल पर डाउनलोड हो गए तो इट इज वेरी कन्वीनियंट। नाउ द कन्वीनियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इट म्यूजिक इज रीचिंग टू एवरीबॉडी, सबके पास पहुंच रहा है म्यूजिक, उनकी जेब में म्यूजिक हो गया। तो इसलिए मैं उसके पॉजिटिव उसके देखता हूँ कि आज का टाइम जो है वो गोल्डन एरा है।
0: आपने देश विदेशों में अपनी मोहन वीणा से बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी हैं, तो कोई यादगार लम्हा जो आपके जहन में हो हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
1: एक मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, एरिक क्लैप्टन जो फेमस है वहाँ पे अमेरिका में, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है, उन्होंने एक क्रॉस रोड गिटार फेस्टिवल किया था और उस फेस्टिवल में मेरा प्रोग्राम रखा था उन्होंने, जहाँ 50-60 हजार लोग सुनने को बैठे हुए थे स्टेडियम में। और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग छोटा छोटा 4-4 मिनट के एक एक सॉन्ग करते हैं, तो आपको 12 मिनट देते हैं हम टोटल। अब शास्त्रीय संगीत हमारा जो होता है या हमारा दूसरा संगीत, उसमें तो 12 मिनट कुछ भी नहीं होते एक्चुअली, लेकिन ठीक है, वो मैंने चैलेंज लिया और 12 मिनट में मैंने सालाब, जोर, झाला, तिहाई, गमक, कसीर, तान, झाला, सवाल जवाब सब बजा दिया और उसको समावेश कर दिया 12 मिनट में, और एक अलग तरीके का वो करके और वहाँ के लोगों को बिल्कुल अलग संगीत सुनाई दिया। तो वो बहुत बड़ी सक्सेस थी, वो मुझे याद है अभी भी, क्योंकि इतनी ऑडियंस के सामने शायद मैंने अभी तक नहीं बजाया। तो जब मुझे 12 मिनट दिए गए तो मैंने सोचा कि आज 12 मिनट में मुझे अपनी जिंदगी भर तक की कमाई आज लुटा देनी है मुझे, क्योंकि जो किया है इतने सालों में वो आज टेस्ट है। इट्स ए बिग एसिड टेस्ट कि आप 12 मिनट में क्या क्या कर देंगे। तो मैंने सब चीजों का समावेश करने की कोशिश की। तो उन्होंने मेरे को 4-5 दिन पहले ही बुला लिया था और मेरे से बोले कि यू कैन कम फॉर रिहर्सल, क्योंकि सारे जो आर्टिस्ट थे वहाँ पे, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे, बीबी किंग, एरिक क्लैप्टन, जॉन मैकलॉकलिन और ये स्टीव, सब ये बड़े बड़े कलाकार थे, तो वो तो रिहर्सल करते हैं पूरे कॉन्सर्ट की

0: तैयारी करते हैं 4-5 दिन तक, कम से कम डेली उनकी वो जो परफॉर्म करने वाले होते हैं वो चीज़ वो रिहर्सल करते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो कोई रिहर्सल करते ही नहीं है, हमारा संगीत ऐसा है कि उसमें रिहर्सल हो ही नहीं सकती क्योंकि हम फिक्स म्यूजिक नहीं बजाते, हमारा तो एक्सटेम्पर एक इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर उसी समय क्रिएट करेंगे हम म्यूजिक, सो आई डोंट रिक्वायर एनी रिहर्सल। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि बोले यू डोंट रिक्वायर एनी रिहर्सल, आई सेड नो हमको नहीं चाहिए, हमारा संगीत एक अलग है, रचनात्मक संगीत है। तो इस तरह से वो लोग भी थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए और फिर 12 मिनट में मैंने करिश्मा दिखाया।
1: बहुत ही बढ़िया, हम दुआ करते हैं कि ये करिश्मा यूं ही कायम रहे। भट्ट साहब यंग जनरेशन को शास्त्रीय संगीत के साथ जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं?
0: देखिए अभी बहुत, जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी बहुत साधन हो गए हैं, यंग जनरेशन वास्तव में जुड़ रही है और संगीत को समझने लगे हैं, संगीत उनके पास आ गया। एक संस्था का मैं जिक्र करूंगा इस सिलसिले में जो स्पिक मैके के जो नाम से है, उसने युवाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रचलित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आज का युवा हमारा स्पिक मैके के लिए मैं उसको जिम्मेदार मानता हूं कि बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। हम जैसे कलाकार सभी लोग मिलकर स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं, स्टूडेंट से रूबरू होते हैं, उनको सुनाते हैं और बड़ी शांति से ये यूथ सुनता है। तो मैं समझता हूँ आज का यूथ है वो दे आर वेरी अवेयर, बहुत आगे हैं, वो हम लोगों से बहुत आगे हैं, उनके पास में सारे साधन मौजूद हैं, सुविधाएं मौजूद हैं और दे आर वेल इन्फॉर्म्ड टूडे। तो मैं उन यंग जनरेशन को बहुत मानता हूँ और उनको बेस्ट विशेष देता हूँ।
1: पंडित जी आज बहुत से श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते खास तौर पर आप हमारी यंग जनरेशन को जो आप ही की तरह संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत के क्या टिप्स देना चाहेंगे?
0: यंगर जनरेशन जो है हमारी बहुत अच्छी है, पर फिर मैं उनको इतना ही सलाह देता हूँ कि भाई एक तो देयर इज नो शॉर्टकट, आपको लंबे रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीने बहाने पड़ेंगे, जल्दी सक्सेस के लिए इतना आतुर ना हो, हर चीज की डेप्थ में जाइए कि उसमें है क्या और फिर ज्ञान अर्जित कीजिए। और संगीत में तो एक गुरु की जरूरत पड़ती है, तो अच्छे गुरु की तलाश कीजिए और उनके चरणों में रह के उनकी बातों को सुनिए, अपने संगीत में रियाज में टाइम दीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए, डिसिप्लिन लाइए, सिंसियरिटी, ये सब चीजें इसमें काउंट करती हैं, तब जाके वो रियाज जो है फलीभूत होता है और उसमें परफेक्शन आता है।
1: जी पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब, आप जिंदगी नामा प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपने हमारे साथ अपनी जिंदगी से जुड़ी शानदार बातें की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ रमेश कपूर साहब कि आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आप विषय की गहन जानकारी रखते हैं और आपने शायद मेरी सारी बातें आपने निकाल ली इतने कम समय में, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ में रमेश जी बात करके।
1: दोस्तों आज यादों का कारवां में आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में जाने माने संगीतज्ञ ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के संगीत सफर की कहानी उन्हीं की जबानी। यादों का कारवां श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कोई यादगार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अश्विनी कुमार। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए, नमस्कार। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। और आज जिन फिल्मों से आप गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं आप आए बहार आई, आराधना, एक दूजे के लिए, प्यार का मौसम और बैराग।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं?

0: जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं।
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
0: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
3: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बच बोल दिया।
4: ए, क्या मैं बोलूं?
5: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
2: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों से आप गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं आप आए बहार आई, आराधना, एक दूजे के लिए, प्यार का मौसम और बैराग। अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुनने के लिए आप हमें फोन करें, टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। श्रोता ऑनलाइन है, बात करके देखते हैं कौन है श्रोता ऑनलाइन। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
6: नमस्कार जी, मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
2: जी नरेंद्र शर्मा जी, कैसे हैं आप?
6: हाँ ठीक है जी, शुक्रिया आपका।
2: तो कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
6: आप आए बहार आए का गाना सुनेंगे जी, लता मंगेशकर का बड़ा मशहूर गाना है।
2: कौन सा गाना?
6: इंतजार करें कोई शादी लाइनें याद आती हैं।
2: हाँ जी,
6: इंतजार कुछ ऐसा लाइन है जी,
2: पूरा या तो बताइए ना आप आए बहार आई का कौन सा गाना, पूरा नाम बताइए गाने का। हाँ जी,
6: कोई गाना भी सुना दे।
2: बिल्कुल जरूर सुनवाएंगे। नरेंद्र जी, आकाशवाणी के साथ कितनी देर से जुड़े हुए हैं आप?
6: मैं तो काफी देर से सुनूं, अब तो 20 साल हो गए जी रिटायरमेंट के।
2: अच्छा,
6: जुड़े हुए रेगुलरली।
2: तो कहीं पे जॉब करते थे, कहाँ से रिटायर हुए आप?
6: मैं चीफ इंजीनियर बागड़ा डैम से रिटायर्ड हुए।
2: आपकी आवाज खराब हो रही है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट पहले भी की। हेलो।
6: हाँ जी, हाँ जी
2: जी, आपकी ना आवाज खराब हो रही है, जहां पे नेटवर्क एरिया वहां पे खड़े हो जाइए आप या बैठ जाइए।
6: अच्छा जी, ठीक है जी।
2: जी तो आकाशवाणी के 90 वर्ष आपको पता है पूरे हो चुके हैं और उसी सिलसिले में हम लोग प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं आपको प्रोग्राम?
6: बड़े अच्छा लगता है जी, पुराने आर्काइव से आप प्रोग्राम ला रहे हैं तो नेचुरली पुरानी यादें याद हो रही हैं तो पुराने लोगों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है।
2: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
6: ठीक है जी,
2: आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर आप आए बहार आई फिल्म का ये गीत।
6: शुक्रिया।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल, और इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत सुनवाते हैं। और अब जो फिल्में हमारे पास बची हैं वो फिल्में हैं आराधना, एक दूजे के लिए, प्यार का मौसम और बैराग। इन फिल्मों से गीत सुनने के लिए आप हमें फ़ोन करें, टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार, मैं मोहम्मद जाकिर बोल रहा था, सेक्टर 12 पंचकुला से।
0: जी जाकिर भाई, कैसे हैं आप? मैं

0: बढ़िया सर जी, बढ़िया। आप कैसे हैं सर?
1: बहुत बढ़िया हैं आप सब। श्रोताओं का प्यार आकाशवाणी चंडीगढ़ को मिल रहा है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: कैसे लग रहे हैं आपको प्रोग्राम्स?
0: सर, प्रोग्राम तो पता ही है, मैंने पीछे ये बात में यही बताया, तो प्रोग्राम तो सर यही तो एक ही प्रोग्राम ही मैं सुनता हूँ आकाशवाणी चंडीगढ़ सर। जी, जो ये प्रोग्राम पूरे दिन 9 बजे से मेरा 9 बजे तक ही चलता है सुबह शाम से। तो
1: कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम, यही पूछा मैंने आपसे।
0: हाँ, प्रोग्राम तो सर बहुत ही अच्छे हैं।
1: तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे जो हम लोग आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम, वो कैसे लग रहे हैं आपको?
0: ये तो पुराने जिसने जितने भी पुराने रिकॉर्ड अभी भी सुनाए थे सरपंडित जी का सर, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो हर एक संडे को आजकल 11 बजे सर 11 बजे तो सुनाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सर। जैसे पीछे भी बात करे था अपने निकेन साहब से, तो उसका भी इंटरव्यू अच्छा लगता है।
1: जी
0: और शाम सुहाने में भी जो बात करवाते हैं सर, वो भी बहुत ही अच्छा होता है।
1: चलिए जाकिर भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बताइए कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: एक दूसरे के लिए सुना दीजिए, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अंजन।
1: जी आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर एक दूजे के लिए फिल्म का ये गीत।
0: थैंक यू सर।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी बोल रहा हूँ जी। और सोने मुने पाजी मिच्छी पाजी नो सवेर वाली नमस्ते है जी।
0: नमस्ते है जी आपको भी सवेर वाली। गुलाटी साहब कैसे हैं आप?
1: आज मुझे याद नहीं था प्रोग्राम, मैं गाड़ी में तेल डलवा रहा था तो जैसे ही रेडियो ऑन किया जो सदा ही 107.2 पे फिक्स रहता है
0: जी,
1: रेडियो दे संग 55 साल दा मेरा साथ तां मेरा भी रहा है। मेरे सब तो आनंदित क्षण जिंदगी दे रेडियो नाल बीते हैं
0: जी।
1: रेडियो इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट गाइडर।
0: वाह जी वाह,
1: मैं थोड़ा बहुत शुक्र गुजार हाँ कि थोड़ी चंगी चंगी गल्लां सुन के मैं अपने जीवन नूं सुधारने की पूरी कोशिश करता रहना।
0: गुलाटी साहब असीं तुहाडे सारे स्रोतियां दे शुक्र गुजार हाँ कि तुहाडे साथ दे नाल देखो आकाशवाणी ने अपने 90 साल पूरे कर ले और यह सिलसिला अगे भी चलता जा रहा है। तो गुलाटी साहब अज इस प्रोग्राम दे विच हुण 3 फिल्मां बचिया, आराधना, प्यार का मौसम ते बैराग।
1: रमेश जी सारे सिटी ब्यूटीफुल च ना थोड़े जैसा सोना कोई नहीं शायद।
0: ओहो
1: कोई ला दो सारे शहर में आपसा कोई नहीं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: गुलाटी जी।
0: फिल्म
1: दा गाना जी
0: आओ सुनते हैं, बैराग फिल्म का एक गीत।
1: ग्रेट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल, और अब जो फिल्में बची हैं, केवल दो फिल्में ही बची हैं, आराधना और प्यार का मौसम, इन दोनों फिल्मों में से आप अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 2660615, 2660617 और 2660619। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: रमेश कुमार भाई साहब को, यश कुमार वर्मा जी, प्यार भाई, नमस्कार।
1: नमस्कार यश कुमार वर्मा जी, कैसे हैं आप?
2: पहले से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
1: तबीयत आपकी अब ठीक है?
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: बीच में आप बीमार हो गए थे।
2: हाँ जी, अब आज का ना कुछ फर्क पड़ता।
1: तो यश कुमार वर्मा जी, कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनवाएं? दो फिल्में ही बची हैं।
2: आराधना, आराधना।
1: आराधना का कौन सा गाना?
2: बागों में बहार।
1: बागों में बहार है जी, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का आराधना फिल्म का ये गीत।
3: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। टन टन टन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बहार है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
4: ना, ना,

0: प्यार का मौसम फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल बच बोल दिया।
2: ए क्या मैं बोलूं?
3: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के

0: दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर हम विविध भारती के ये चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
3: यादों के साथ हाजिर हूं मैं विधि जैन, नमस्कार। पहला गीत हम सुन रहे हैं अभिनेता प्राण जी, इन पर फिल्माया गया यह गीत हम सुनते हुए आज याद करते हैं अभिनेता प्राण को उनकी पुण्यतिथि विशेष दिवस पर।

हम सुन रहे थे उपकार फिल्म का यह गीत, जिसे गाया मन्ना डे ने, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल में हम लेकर आए हैं हमारी कुछ यादें कुछ अलग अलग कलाकारों के साथ। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों की, किसी की जन्मदिवस है, किसी का पुण्यतिथि है, तो हम उन सभी कलाकार को याद कर रहे हैं। और आज ये फिल्मकार विमल राय का जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा सजाए गए, पिरोए गए इन गीतों को।

हम सुन रहे थे विमल रॉय कृत फिल्म बंदिनी से आशा भोसले की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जिस फिल्म को भी सजाया है विमल रॉय ने। फिल्म है सुजाता, एस जी वर्मन सचिन देववर्मन ने इसे गाया है और सचिन देववर्मन ने ही उसे संगीतबद्ध किया है। मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज हमने यादों की महफिल में सबसे पहले सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माया गया यह गीत, और अब हम सुन रहे हैं फिल्मकार विमल राय पर के द्वारा सजाई गई फिल्मों के गीतों को। इसके बाद और भी कई किरदार हैं जिनको आज हम याद करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं विमल राय कृत फिल्म दो बीघा जमीन। इस फिल्म से लता मंगेशकर मनाडे और साथियों की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी का है संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आइए हम सुनते हैं एक और गीत जो कि है विमल रॉय कृत फिल्म परख से। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के हैं बोल और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: सुझे

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। अभी तक हमने सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माए गए गीतों को। हमने सुना विमल रॉय, एक बहुत खूबसूरत फिल्मकार के द्वारा फिल्माई गई फिल्मों के गीतों को। और अब हम चल रहे हैं, आज याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को। तो आइए सुनते हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए इन गीतों को।

0: हम सुन रहे हैं झुक गया आसमान, फिल्म से सुन रहे थे ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ सजा हुआ है यह गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में आज का पंछी फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे गोरा और काला, फिल्म से यह गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बहाने खिली तनी।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हम बहुत सारे कलाकारों को याद करेंगे, तो आज हम याद करने जा रहे हैं कुछ गीतों के साथ गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित को। आज उनका जन्मदिवस है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे अपनापन फिल्म से यह गीत सुलक्षणा पंडित किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में।

0: हम सुन रहे थे उलझन फिल्म का यह गीत किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाज में। और आज का कार्यक्रम यादों की महफिल समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे।

1:15 पर और शाम 5:05 पर 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे। 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत पेश किया जाएगा 3 बजे। नाट्य तरंग कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक सुनिए सूखा पेड़। लेखक और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में रीमा और अमरा पुरकर से यूनस खान की बातचीत का 4th भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुन सकते हैं शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम नॉन स्टॉप नगमे। कार्यक्रम अमृतवाणी होगा शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे एमपी लेले की लिखी हास्य नाटिका सुनिए कॉलोनी कल्याण मंडल। निर्देशक हैं स्वतंत्र कुमार ओझा। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम फिल्म निर्माता निर्देशक बिमल रॉय पर केंद्रित रहेगा।

और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल राज्य के आबकारी प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक और कदम उठाते हुए संशोधित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली और ऑनलाइन आबकारी सेवाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग के विजन 2047 की भी समीक्षा की और विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं तथा संकल्प पत्र की घोषणाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के लिए QR कोड आधारित ट्रैक एंड इस प्रणाली के उन्नत संस्करण से डिस्टिलरी और बॉटलिंग से लेकर थोक और खुदरा बिक्री तक शराब की हर बोतल के आवागमन पर पैनी नजर रखी जा सकेगी और उसकी विशिष्ट पहचान की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे आबकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होगा और अवैध शराब के प्रसार पर रोक लगने से निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आबकारी विभाग को इस प्रणाली से पूरी आपूर्ति श्रृंखला की रियल टाइम निगरानी करने, कर चोरी

और तस्करी के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करने, डेटा आधारित निर्णय लेने और राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने में बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू की गई 8 नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं से अब विभिन्न लाइसेंस और अनुमतियों के लिए ऑनलाइन और कागज रहित सेवा वितरण के दायरे में वृद्धि हुई है। इन ऑनलाइन सेवाओं में एक महत्वपूर्ण जुड़ाव अस्थायी शराब परोसने के लाइसेंस का अनुदान है। यह ऑनलाइन प्रणाली लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाएगी, अनुपालन के बोझ को कम करेगी और आवेदकों के लिए व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करदाताओं से इस वर्ष 1 जून से वैट केंद्रीय बिक्री कर हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम जैसे जीएसटी पूर्व कर कानूनों के लिए शुरू की गई एक मुश्त निपटान योजना के तहत कर छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सभी करदाताओं के लिए 100% जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया गया है और विभिन्न स्लैब में देय कर में भारी छूट भी दी गई है। सरकार ने इस योजना के तहत दस्तावेज बद्ध छूट तंत्र पेश किया है जिसमें करदाता वैधानिक फार्मों के सत्यापन पर कर की मांग को कम करवा सकते हैं जिन्हें अब करदाताओं द्वारा जमा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निपटान योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आबकारी एवं कराधान विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेहद सरल बना दिया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों व निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में सभी मतदाता अधिकारियों व कर्मचारियों से पूरा सहयोग करें। 10 जुलाई को ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव नाथुसरी चौपटा में बूथ संख्या 73 पर निर्वाचन कार्य के दौरान ड्यूटी पर तैनात बीएलओ एवं उनके सहायक के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यवहार करने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में बाधा डालने अथवा सरकारी कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता एवं कानून व्यवस्था भंग करने के प्रयास को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नियम अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता एवं मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई तक गणना प्रपत्र जमा करवाने की आखिरी तारीख है। ऐसे में सभी मतदाता समय रहते अपना SIR फार्म BLO के पास जमा करवाएं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कल करनाल के घरौंडा हलके के गांव पुंडरी में करीब 1.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें कश्यप चौपाल, पाल चौपाल, सामुदायिक केंद्र और पीर बाबा के नजदीक हॉल का शिलान्यास शामिल है। इनका निर्माण पंचायत एवं विकास विभाग की ओर से कराया जाएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री कल्याण को पुंडरी में महिला चौपाल बनवाने की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीणों से सामुदायिक विकास कार्यों में मिलजुल कर सहयोग करने का आह्वान किया है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: बढ़ा रहा है। सवेरे 8 बजे तो शुरू होया कैंप दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। अजिहा एक कैंप कल भी लाया गया सी। इन्हां कैंपा दौरान बाकी रहिंदे गणना फार्म भरे इकट्ठे ते डिजिटाइज कीते जा रहे ने। वोटर सूची दीआं खामियां ते फर्क नूं दूर कीता जा रहा है अते नागरिकां नूं उन्हां दे वोट दे वेरवियां नूं अपडेट अते तसदीक करन विच सहायता कीती जा रही है। चंडीगढ़ विच वी 2 दिनां दे विशेष कैंप लाए जा रहे ने। बटाला दे हाथी गेट नेड़े अज तड़कसार कबाड़ ते गोदाम नूं अग लग गई। अग काफी भयानक सी पर बटाला गुरदासपुर ते अमृतसर तो अग बुझाऊ गड्डियां दी मदद दे नाल इस ते काबू पाया गया। गलबात दौरान अग बुझाऊ अमले दे अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही अग बुझाऊ अमला फौरन मौके ते पहुंचया ते नाल दे जिले कोलों अग बुझाउण वालियां गड्डियां मंगवाईयां गईयां कि अग ते काबू पाया गया। अग लगन दे कारण दा अजे तक पता नहीं लग्या है। गुरदासपुर दे पुलिस स्टेशन बैरामपुर दी नांदे पिंड जगो चक टांडा दे खेतां विच इक शक्की ड्रोन मिलिया है। ड्रोन देख के स्थानक लोकां वल्लों तुरंत पुलिस नूं सूचना दित्ती गई जिस तों बाद पुलिस टीम मौके ते पहुंची। इस संबंधी जानकारी दिंदे होए डीएसपी दीनानगर रविंदर मनहास ने दस्सिया कि मौके ते पहुंच के ड्रोन नूं कब्जे विच लै के जांच शुरू कर दित्ती गई है। घटना दी सूचना मिलदे ही उच्च अधिकारी भी मौके ते पहुंचे ते आले दुआले दे इलाकियां दी बारीकी नाल तलाशी लई जा रही है। सूबे विच चल रही मुहिम गैंगस्टरां दे वार दे 172वें दिन पंजाब पुलिस ने कल राजभर विच गैंगस्टरां दे साथियां दे पछाणे गए ते मैप कीते गए 661 टिकाणियां ते छापेमारी कीती। जिक्रयोग है कि गैंगस्टरां दे वार पंजाब नूं गैंगस्टर मुक्त सूबा बनाउण लई फैसला कुंजांगे जो 20 जनवरी 2026 नूं पुलिस डायरेक्टर जनरल डीजीपी पंजाब गौरव यादव वल्लों शुरू की गई सी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF पंजाब दे तालमेल नाल सारे जिलियां दियां पुलिस टीमां राजभर विच विशेष कारवाईयां कर रहियां ने। 172वें दिन पुलिस टीमां ने 417 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार कीता जिस नाल मुहिम दी शुरुआत तों बाद कुल गिरफ्तारियां 46,774 हो गईयां ने। इस तों अलावा 348 व्यक्तियां विरुद्ध एहतियाती कारवाई कीती गई है। पुलिस टीमां ने कारवाई दौरान 13 भगौड़े अपराधियां नूं भी गिरफ्तार कीता है। लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946 राही लोड़ीं दे अपराधियां ते गैंगस्टरां विरुद्ध गुप्त रूप विच शिकायत कर सकदे ने अते अपराध ते अपराधिक गतिविधियां बारे सूवी दे सकदे ने। नंबर एक बार फिर सुन लो 93946 93946। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी ते पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की पेशीनगोई की है। इन्हां विच पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख ते उत्तराखंड दे नाल नाल उत्तरी ते पूर्वी भारत के होर हिस्से शामिल ने। इंग्लैंड ने फलोरिडा विच नॉर्वे नूं 2-1 नाल हरा के फीफा विश्व कप के सैमी फाइनल विच थां बना ली है। इंग्लैंड के जोड बेलिंगम ने वादू समय विच 2 गोल करके इंग्लैंड नूं जित दवाई। इंग्लैंड का 3रा विश्व कप फाइनल है। स्पेन ते फ्रांस पहला ही सैमी फाइनल विच दाखिल हो चुके ने। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म होईयां। साडा XHandle @AIRRN जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुणोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं शान फिल्म के गीत से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और राहुल देव बर्मन की। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अपना देश फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की।

0: महान फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

और हम सुन रहे थे महुआ फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जो हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है, और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, और आपने तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता दिया। आपने बताया कमर जलालाबादी इसके गीतकार हैं और सोनी कोमी इसके संगीतकार, तो बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों बातों को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और हमने आपसे पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न कि हमारे भारत की संख्याएं जो हैं वो कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, कहाँ तक हो सकती हैं, आप क्या सोचते हैं? तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं कि वो लिखते हैं कि एक कल्प आखिरी संख्या जब विष्णु भगवान की आँख खुलती है और युग परिवर्तित होता है। ठीक है, आपने धर्म के हिसाब से उत्तर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब नील दस नील पद्म दस पद्म शंख महाशंख, और इसके बाद ये रुक जाते हैं। तो अंत्य और महाअंत्य दो संख्याएं भी सुनने में आती हैं, और सागरोपम आयु की बात भी आती है, सागर छह सागर दस सागर पंद्रह सागर तैतीस सागर, ये बात भी बड़ी आती है। हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे दो खरब तक पता है, एक खरब सौ अरब, उसके बाद उन्होंने एक के बाद बहुत सारे शून्य लगाए हैं, और वो लिखते हैं इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, आखिरी में इन्फिनिटी होता है। बहुत सही बात है, भारत की संख्या अनंत है, खत्म ही नहीं होती, ये भाव भी बड़ा अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं अक्षौणी भी एक संख्या है, महाभारत की युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षौणी सैनिक, तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सैनिक थे, और भी है जैसे कल्प महाकल्प समय गिनती के लिए भी गिने जाते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं, और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सही तरीके से आपने बताई हैं, और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं अरब खरब नील पद्म शंख, और इसके बाद बुंदेलखंडी में अटैया बटैया भगवान की चुटैया जी, ऐसे कई सारे अंक होते हैं बड़े प्यार से और जिन्हें हम अपना लेते हैं। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं आज संडे की छुट्टी है, बेटी भी घर पर है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती है, बैंक ऑफिसर है, तो वो लिख रही है रेडियो की पर आपकी प्रस्तुति सुन रही है, और हंसते हुए कह रही है कि अंक नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे, तो मेरी जॉब का क्या होगा ये भी बड़ी चिंता है, चिंता का विषय है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं पता, करोड़ तक तो पता है, उसके बाद खरब का भी पता है, शंख महाशंख बिंदु कुछ सुने हैं, एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता है। तो एक काम करते हैं ना कि आज जब हम ये सुन रहे हैं तो इसके बाद एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय अंकों को जरा एक बार पढ़कर देखते हैं कि वो कहाँ तक जाते हैं और कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे घरों में हमको सुनाया जाता था कि बड़े प्यार से एक ताना भी होता था, फूटी कोणी में भी नहीं लेगा कोई ये सामान, कई सारी चीजों की बात आती थी, तो कहीं से शुरू होकर कहीं तक चला जाता था। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, और सौंपते सौंपते एक प्रश्न है आपसे, क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जो केवल अंकों पर बना हो, अंकों से ही बना हो, ग्रंथ हो किताब हो कोई भी चीज हो, आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है, पजल सॉल्व किए होंगे अंकों के, वर्ग पहेली भी एक आती है समाचार पत्र में, उसमें भी अंकों की आते हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है या ऐसा कोई ग्रंथ ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो केवल अंकों से बनी हो और केवल अंकों पर आधारित हो? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर बताइएगा। और ये वाला गाना जो है ये एक पहेली है, इस पहेली का उत्तर भी दे दीजिए और बता भी दीजिए, और ये बता दीजिए कि इसके गीतकार कौन है।

0: हम सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म से यह गीत आशा भोसले मुकेश और सिमी की आवाज़ में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आप सभी ने बताया हसरत जयपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ये गीत ऐसा लिखते हैं, मुझे तीतर की आवाज़ बहुत पसंद है, पूरी वादियाँ गूंजती हैं इस आवाज़ में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती अंक पर आधारित है और एक ग्रंथ है आर्यभट्ट आर्यभट्टीय, यह भी अंक पर आधारित है। बिल्कुल सही। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह एक प्रमुख पुराण है जिसे विश्वकोश माना जाता है। संख्या गणना इसमें खगोल शास्त्र गणित काल समय विभाजन के अलावा ब्रह्मांड के माप का विस्तृत वर्णन भी है।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: विद्या जो थी वो अंक विद्या कही जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी को 1 से 9 तक के अंकों को सिखा कर दी थी, ऐसा कहा।

जाता है। दश कुमार चरितम पंचतंत्र की कहानी पर आधारित मगर शीर्षक संख्या पर है। क्या बात है, इतनी सारी जानकारी मुझे भी मिल रही है, कई चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं एक शिक्षक हूँ मगर आज बच्चों को 1, 2, 3 तो आते हैं पर हिंदी के अंक 1, 2, 3, 4 ना पढ़ने में आते हैं ना लिखने में आते हैं। बहुत विचारणीय बात आपने कही है और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने इस बारे में बहुत सारे बातों को बताया है। और एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, भी थोड़े दिन पहले ये जानकारी मुझे भी कहीं से मिली थी, क्योंकि एक श्री भूवलय ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी सुनने में पढ़ने में आई है कि ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ भी ना केवल और केवल अंकों पर आधारित है और इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं और इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं, जैसे तात्विक विचार हैं, वैद्यक, अणु विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवद गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं और पहला कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था और इसमें 6 लाख पद्य हैं और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी, तो ये सारी जानकारियां आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूं, हम सब इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हैं, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हैं। इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, पहले जमाने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कौड़ी का दंड करते थे, तो हमारे यहाँ कहावत ये हो गई कि आदमी कौड़ी का भी नहीं है। जी, 5 सिद्धांतिका गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है। जी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ बनाते पहुंचाते हैं और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है, अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, तो अंकों से दोस्ती कीजिए। और सुनते हैं हम अगला गाना, 5 रुपया 12 आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देवर्मन का संगीत, और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़ी मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूँ। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना 5 पैसे का एक सिक्का और 1 पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, 6 पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे। ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी वो इस बात पे। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वो संभा कितने आदमी थे सरदार, दो देखा गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे

0: श्रोताओं ने लिखा है और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं तो एक दर्द देना तो बनता है। वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का एक्स है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है और ये दर्द मेरी तरफ से आपके लिए।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग

इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न में आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है, वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अगला गीत है, इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।

kau.

हम सुन रहे थे तीजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन है। गीतकार हैं जावेद अख्तर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत। और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई है, तो एक शरीर में कितने दो, दस तोला, बोसाकी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक ने नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारे श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शत प्रतिशत अंक लगभग लेकर आने लगे हैं। और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर में बस इतना ही। गणित के साथ पले बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहली पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा।

0: जाएगा।
1: पहले सोचो फिर बोलो, बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हो या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथ ही किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है। उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे, तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचनते जग अपनो कर लेत।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है।

0: अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित

0: अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
4: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन

0: खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गो हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा देवदास फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे राजहट फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।

0: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

थे तक मुरली की धुन सुन आई दा दे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत ऐसी चंद तपन दिग्नाद राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

मीना लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नागिन देश देश सगन नगाना किट झट झट झट झट झट सगन का किट

0: हम सुन रहे थे परिवार फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा भाई फिल्म से। आशा भोसले और तलत महमूद ने इसे गाया, प्रेम सक्सेना ने इसे लिखा और नाशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, जो है नया दौर फिल्म से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और ओपी नैयर का है संगीत।

0: गाना।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: मिल जाएगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ नियम मन चाहे गीत कार्यक्रम के।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
5: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतर्देशीय नहीं के

0: पोस्ट कार्ड भेजे। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

मनचाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, इंतजार करते हैं अपनी बारी के बारे में भी कि हमारी बारी कब आएगी और हमारा गीत कब आएगा। तो चलिए चलते हैं इस गीत की तरफ जो कि है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, खयाम का संगीत है। जानेंगे इस गीत के बाद कि पसंद किया है किसने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे और हमने कहा था कि बाद में बताएंगे कि पसंद किसकी है, तो पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। ये कई बार हमारा मन होता है ना कि हमारा नाम रेडियो पर आ जाए, या कई बार मन होता है कि हमारा पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ जाए, और शायद इन दोनों की पूर्ति करने का नाम ही है मनचाहे गीत। तो चलिए मनचाहे गीत में आपका मनचाहा गीत यानी आपकी पसंद में से किसी एक की पसंद का अगला गीत हम आपके को सुनाने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है और इसे मांगा है चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद चुद परिवार ने और टोनी दीवान ने। ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं इसे और आप अपनी फरमाइशें यानी अपनी पसंद हमारे पास यूं ही उसी डाकिया, उसी पोस्टकार्ड, उसी लाल काले डब्बे के साथ भेज सकते हैं, ढेर सारी आशीर्वाद प्रेम और स्नेह के साथ भेजिएगा जरूर अपनी पसंद।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं, गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरसाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है।

बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चोपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी पसंद का।

हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए? इसी भावभूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: रिकॉर्ड प्लेयर? रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओ जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया। वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो, ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल। एक पूरब को जाता है, दूसरा पश्चिम को। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं। जरा कपड़े बदल लो, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों, आप क्यों? ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी है मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए।

0: अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए, वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर श्रृंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या?
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
0: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
1: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए।

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी है यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
0: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
2: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। हा हा हा, मजा आ गया।
2: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
2: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
2: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओह, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
2: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
2: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
2: बात क्या है, यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है। लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
2: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन सपना तो बंदा

0: जीजा जी, अरे कहाँ हैं?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहाँ से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैयां डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ भाई, इस गुनगुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानती हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविता बाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसोफर तो है नहीं, हम बस सीधे सादे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो, मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है। पर मैं पूछती हूँ, क्यों? आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण? मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
0: जीजा जी,
1: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
0: मैं नीचे जाती हूँ।
1: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी, जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
0: जी,
1: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
0: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
1: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
0: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं? चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो? ये क्या बात हुई? मैं तो हूँ ही पहाड़न। पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ, ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या। जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंस

0: ऐसा देखकर कौन कहेगा?
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही, पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम। तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो? बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिक में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्हें कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़काकर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगा तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी। घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करो मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप। मेरे किए क्या हो सकता है, और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
0: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
1: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
0: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
1: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
0: पता नहीं।
1: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है

0: सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
1: नहीं तो आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
0: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
1: जमती थी? पता नहीं।
0: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
1: पूछिए।
0: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
1: जी
0: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
1: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
0: अगर बर्फ पिघल कर धरती में जज्ब हो जाए तो?
1: रोज रोज कहां होता है ऐसा। बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी, कई बरस हो गए उस बात को। अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी और उस बार वो अकेले

0: साले तू हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है?
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय सच कहूं मीनाक्षी, अगर तू ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहा है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गए तेरे सरगम वाले वो कॉपी? पता नहीं कहाँ रख देती है। ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाओ?
1: अरे नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेते तो अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान कब हुआ?
1: देख पल्लू तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका
1: लड़का है?
0: अरे हाँ हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाते है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई, है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है क्या सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
1: देखकर बताना।
0: अरे यार यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा।

0: पल्लवी, कितना नया नाम है। नहीं
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पाँव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यही रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियाँ बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़ी ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो आई नो, सगी होती तो तुम्हारी

0: महीने भर रहेगी।
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो? पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसी हुई है, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार अपने ये फिलॉसफी, हानी तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: अब छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करते हुए नजर आती।
1: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
2: शेखर को?

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ मुझे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है।
0: नहीं, सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं हो सकता, अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर

इसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है, इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। ठूठ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, कौन?

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से

0: शुरुआत की और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब ही नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
0: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना, और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं। जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात
1: बहुत
0: मानी जानी
1: बात
0: चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे।
1: करेक्ट।
0: और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम
0: नहीं,
1: और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरुभव ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो।

0: अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा।
0: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे, पैसे
0: वो,
1: ले सकते
0: हाँ,
1: थे।
0: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त माड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे माड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे, आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज़ जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन
0: है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई।

0: बिल्कुल रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
1: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे
0: कमजोर
1: होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो। आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते
0: अगर बिल्कुल
1: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है, आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है। इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
0: जुझारू
1: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूं, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त, लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
0: ये होना ही नहीं चाहिए।
1: हाँ,
0: कोई भी
1: और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
0: बिल्कुल,
1: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
0: राइट,
1: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
0: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं,
1: exactly.
0: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए
1: बहुत,
0: और
1: बहुत
0: लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय,
1: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी, और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
0: दूर दूर से आए थे।
1: और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखाया है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर

0: पर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो। कोई ना कोई वो याद निकालता ही है, और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं। वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी। लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं, और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वाज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं, और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए, तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी

0: बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
2: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
2: और क्रिएटिव है
1: जी।
2: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
2: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें?
2: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
2: हाँ, और उसके बोल है मेरे दिल में है इकबाल।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे
1: जी।
0: तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारे स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब

0: रखा जाता था, आज भी रखा जाता है, और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला। हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे। रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी,
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं।

0: गलियां।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
2: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
2: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
2: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
2: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
2: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपये कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो,
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
2: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
2: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
2: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
2: जी।
1: वो प्यासा

0: ये सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। okay. और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या है आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट,

कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख

0: लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो, तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी, वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है, उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके, कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है, आपके होने से ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
1: क्या बात है रीमा जी। पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
0: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पुणे से, कोखले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पुणे में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, और तब जाके मैंने राशुमान देखी अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गया कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
1: राइट।
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की, और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था, वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है, तो मैं एनजीओज के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था, तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं, पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन, किस्से, घटनाएं और पापा, उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही, मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत कर

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवाहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमलों के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने यमन यात्रा संबंधी 2017 की अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर कुछ शर्तें लगाने के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यमन की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर जरूरी हो तो स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरा आकलन करने के बाद यात्रा करने का परामर्श दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के समाज सुधारकों का महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के द्वारिका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मन्नाथ पद्मनाभन आजीविक सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और समुदाय सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा भी लगाया। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन को जन

0: में बदलना है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला डबल्स और पुरुष सिंगल्स के फाइनल खेले जाएंगे। महिला डबल्स में शाम 5:30 बजे चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलिना माल्डोनोविका की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्राबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं लीजिए, अब पेश है फिल्म संगीत। सावरिया फिल्म से गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शान की आवाज है, समीर अंजान के बोल, संगीत से संवारा मोंटी शर्मा ने।

ये डुएट गीत हमने चुना है रंग दे बसंती फिल्म से। संगीतकार हैं ए आर रहमान, गीतकार हैं प्रसून जोशी, गायक हैं नरेश अय्यर और मधुश्री।

तुम मिले फिल्म से जावेद अली इरफान और शादाब का गाया गीत आप सुन रहे थे। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है. ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है. यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है. उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है. ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो. दोस्तों, मैं अब उद्यमी

बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं। हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। सोचने की शक्ति, यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं। आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं। व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है। इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें। निर्णय लेने की क्षमता, एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है। यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है। निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना, धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवा में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना, अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है, आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम है। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हो तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन, सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति, एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना, एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व, एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है

0: सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। With this, we conclude today's program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब पेश है प्रोग्राम नॉन स्टॉप नगमे। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम नॉन स्टॉप नगमे में। एक बार फिर हम आपके लिए कुछ खूबसूरत नगमे चुनकर आए हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए अब से लेकर अगले 30 मिनट तक नॉन स्टॉप गीतों का लुत्फ उठाने के लिए। शुरुआत कर रहे हैं हम ओमकारा फिल्म के गीत के साथ।

0: दोस्तों, ये था हमारा आज का नॉनस्टॉप नगमे प्रोग्राम। प्रोग्राम की शुरुआत हमने की ओमकारा फिल्म के गीत ओ साथी रे के साथ। गीत को गाया था श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज ने। प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाया और गीत आपको सुनवाया अगर तुम मिल जाओ। जहर फिल्म थी, आवाज थी एक बार फिर श्रेया घोषाल की। फिर साधना सरगम और उदित नारायण ने मिलकर गीत गाया आओ ना। फिल्म का नाम था क्यों हो गया ना। हमने रुक किया जन्नत फिल्म के गीत की ओर, जरा सा दिल में दे जगा दो। गायक कलाकार थे के। बरेली की बर्फी फिल्म से गीत हमने आपको सुनवाया तू नज्म नज्म सा मेरे। आरकू ने क्या खूब था गीत को निभाया। और इसी के साथ अब प्रोग्राम नॉनस्टॉप नगमे समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रखा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक

0: जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोतियो हुन ए गीत अनु सुनवारियां आदि पुरुष फिल्म चो आवाजा ने साचे टंडन ते परंपरा टंडन दिया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस न्याय परिसर का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण पर बल दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने माफी योजना शुरू की। योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने होडल के गांव पिंगोड में 2,63,00,000 रुपये की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में देश का किसान और गरीब, कांग्रेस का काम हर विषय को लेकर अफवाहें फैलाना है। और मौसम विभाग ने आज और कल कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने वर्चुअल माध्यम से नूह जिला के तावड़ो व पुनहाना न्यायिक परिसर का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण न्यायिक परिसर का निर्माण हरियाणा सरकार की संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार की सक्रिय सहभागिता के फलस्वरूप हरियाणा में न्यायिक परिसर का ढांचागत विकास सुदृढ़ हो रहा है और टावर ऑफ जस्टिस जैसे न्यायिक भवन न्याय प्रक्रिया को सौहार्दपूर्ण वातावरण देने में सहभागी बनेंगे। इस दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य गणमान्य ने टावर ऑफ जस्टिस निर्माण में अपना योगदान देने वाले श्रमिकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यास चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि न्यास का संचालन कर रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे EPFO के बजाय अपने निजी न्यास के माध्यम से करते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर EPFO की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज पलवल जिले में होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव पिंगोड़ में लगभग 2,63,00,000 रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें हरियाणा ग्रामीण विकास निधि योजना के तहत लगभग 25,00,000 रुपये की लागत से सामुदायिक भवन, लगभग 62,00,000 रुपये की लागत से गांव की फिरनी का निर्माण, लगभग 15,00,000 रुपये की लागत से बनने वाले रविदास भवन सहित विभिन्न समाजों की चौपालों एवं अन्य जन सुविधाओं

0: से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर श्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मोदी जी का विजन सबका साथ सबका विकास गांव में दिखाई दे रहा है। गांव में हर वर्ग की चौपालों का निर्माण कराया गया है। मीडिया से बातचीत में श्री गुर्जर ने कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र के गाँव के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।
1: आज लगभग 2,63,60,000 के काम यहाँ पर इस दौरान हमने किए हैं और ऐसा कोई समाज कोई धर्म के लोग नहीं है जिनके लिए काम नहीं किया। मोदी जी का जो सबका साथ और सबका विकास का जो असली स्वरूप है वो पिगोर गांव में नजर आता है। यहाँ किसी भी वर्ग की ऐसी कोई चौपाल नहीं है जो ना बनाएगी। रास्ते हो, यहाँ के लिए कम्युनिटी सेंटर हो, चौपाल हो, सबका काम इस हमने देखा होगा सारी लिस्ट में सबका किया, फिर भी कोई छूट गया तो उसे करेंगे।
0: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव खांबी में भी 4 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में देश का किसान और गरीब है।
1: मोदी सरकार की प्राथमिकता में इस देश का किसान और इस देश का गरीब है। सबसे पहले उनके खजाने पर हक इस देश के गरीबों का है, इसलिए हर योजना में मोदी जी की में आपको देश का किसान नजर आएगा, देश का गरीब नजर आएगा। गरीब का मुफ्त में इलाज हो, खाने के लिए मुफ्त में अनाज हो, बीमारी में लेने के लिए सस्ती दवाई हो, किसानों के लिए बीज के लिए खाद के लिए साल में 6,000 रुपयों में देने की बात हो, इस सब इंतजाम मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ और इसीलिए लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी पर और नायब सैनी जी की सरकार पर बढ़ रहा है।
0: श्री गुर्जर ने कहा कि किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने तथा फसलों का उचित मूल्य देना मोदी सरकार में ही संभव है। श्री कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का काम हर विषय को लेकर अफवाहें फैलाना है।
1: देखिए अब इनका क्या कहूँ, ये वोट की चोट खाए हुए लोग हैं, ये हर चीज में अफवाहें फैलाते हैं। SIR का विरोध इन्होंने पश्चिम बंगाल में बिहार में खूब किया, लेकिन नतीजा क्या आया? ये SIR का विरोध करते हैं, ये EVM का विरोध करते हैं, ये न्यायालयों के फैसलों का विरोध करते हैं, ये चुनाव आयोग का विरोध करते हैं, विरोध कहाँ नहीं करते ये? ये सेना पर उंगली उठाते हैं तो इनका क्या होगा? ये हताश और निराश लोग हैं, ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं। देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि देश हित में कौन जरूरी है।
0: श्री गुर्जर ने कहा कि इसलिए देश के 80% हिस्से में BJP और NDA की सरकार है। मौसम विभाग की चंडीगढ़ केंद्र ने आज और कल 13 तारीख को कुछ स्थानों पर और उसके बाद राज्य में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा आज कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। पंचकुला पुलिस की साइबर अपराध शाखा की टीम ने 13,10,000 रुपए की साइबर ठगी का पर्दाफाश करते हुए 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक जिम्बाब्वे का नागरिक है जो स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था तथा दूसरा नाइजीरिया का नागरिक है जो मेडिकल वीजा पर भारत में रह रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने 3 से 7 जुलाई तक नेपाल के पोखरा में आयोजित 10वीं इंडो नेपाल स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले बल्लभगढ़ निवासी शुभ सिंह और उसके कोच मुकेश फौजी को आज सम्मानित किया। शुभ सिंह ने 3 किलोमीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर भारत, हरियाणा और फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। श्री मूलचंद शर्मा ने शुभ सिंह के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उसकी उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। विधायक ने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। नूह के उपायुक्त एवं मेवात विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल पिलानी ने जिले के युवाओं से भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती की तैयारी के लिए संचालित किए जा रहे निशुल्क विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने का आह्वान किया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण पर

दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने माफी योजना शुरू की, योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि चुकिरदे दी रक्षा ते एक निरंतर रहन योग भविख नूं यकीनी बनाउण लई रुख लाउणा बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब दे राजपाल गुलाब सिंह कटारिया ने कहा कि सिक्ख्या दा असल उद्देश राष्ट्र दे विकास विच सरगर्म योगदान पाउण वाले नागरिक तैयार करना है। मिलाज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की 51वीं कन्वोकेशन 456 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीतियां। पंजाब च एसआईआर प्रक्रिया के हिस्से वजो सूबे भर के वोटर केंद्रा ते लाए गए 2 रोजा विशेष कैंपा दौरान 30 लाख तो वध वोटर ने अपने गणना फार्म भरे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री लाल चंद कटारू चक ने एक विशेष समारोह च जिला पठानकोट के वख-वख वर्गों नाल संबंधित करीब 150 लाभपात्रियों नवे राशन डिपो अलॉट किए। तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्सों में बारिश की पेशीनगोई की है। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस गल ते जोर दिता है कि चुकिरते की रक्षा ते एक निरंतर रहने योग भविख नूं यकीनी बनाउण लई रुख लाउणा बेहद महत्वपूर्ण है। नवी दिल्ली विच वृक्ष मित्र प्रोग्राम अते पर्यावरण संरक्षण संकल्प समागम नूं संबोधन करदिआं श्री चौहान ने कहा कि अज पूरी दुनिया जलवायु तब्दीली अते आलमी तपश बारे चिंतित है। उन्हां कहा कि 1880 तो समुद्र के तापमान विच वाधा अते ग्लेशियर पिघलण कारण विश्व पद्धर ते समुद्र के पद्धर विच करीब 20-23 सेंटीमीटर का वाधा होया है। उन्हां अगे कहा कि धरती का औसत तापमान 1900 दे मुकाबले करीब 1.5 डिग्री सैलसियस वधिया जो कि जलवायु तब्दीली का एक गंभीर चेतावनी संकेत है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: श्री चौहान ने इस गल ते भी जोर दिता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट नाल निजिठण लई कई मुख पहलकदमियां कीतियां ने। उन्हां कहा कि देश विच नवीआणयोग ऊर्जा समर्था विच अहम वाधा होया है। मंत्री ने चुगिरदे दी रक्षा ते संभाल लई एक पेड़ मां के नाम मुहिम अते मिशन लाइफ वर्गियां पहलकदमियां दा भी जिक्र कीता। उन्हां कहा कि भारत ने 2070 तक कार्बन निकासी खत्म करन दा टीचा रख्या है। पंजाब के राजपाल ते गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के चांसलर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सिक्ख्या का असल उद्देश सिर्फ रोजगार प्राप्त करना नहीं सगों अजिहे जिम्मेवार संवेदनशील अते नैतिक नागरिक तैयार करना हुंदा है जो समाज ते राष्ट्र दे विकास विच सरगर्म योगदान पाउण। राजपाल ने अज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की 51वीं कॉन्वोकेशन 456 विद्यार्थियों नूं डिग्रियां प्रदान करन समय आपने संबोधन दौरान एक गल कही। डिग्रियां ते तमगे प्राप्त करन वालियां च 3 विद्यार्थियों नूं चांसलर मैडल, 35 होनहार विद्यार्थियों नूं मेमोरियल मैडल, 82 खोज विद्यार्थियों नूं PhD अते 336 विद्यार्थियों नूं ग्रेजुएट ते पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां प्रदान कीतियां गईयां। इस मौके श्री कटारिया ने कहा,
2: चांसलर मैडल 3 लोगों ने प्राप्त किया, 35 लोगों को आपने मेरिट मॉडल मेडल से सम्मानित किया और ये सौभाग्य है कि 82 स्टूडेंट ने PhD प्राप्त की जिनको डिग्री आपने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ये सब मिलाकर 456 बच्चों को यहाँ बुलाकर डिग्री दी। इसके लिए आप सबका भी धन्यवाद धन्यवाद। सच में आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे इसी विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने USA में जाकर के अपनी शिक्षा का और यहाँ की शिक्षा का जो परचम लहराया है, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए वास्तव में जसप्रीत सिंह जी आपका तो बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ अध्ययन करके किस प्रकार से USA में भी अच्छे लॉयर के रूप में स्थापित हुए हैं, ये क्रेडिट आपको तो है ही है लेकिन इस विश्वविद्यालय को भी ये क्रेडिट जाती है।
0: उन्होंने अकादमिक सिक्ख्या पूरी करने उपरंत समाज विच कदम रखने जा रहे विद्यार्थियों को कहा।

0: सरगर्म योगदान पाने वाले नागरिक तैयार करना है। पंजाब एसआईआर प्रक्रिया के हिस्से वजो सूबे भर के वोट केंद्रा ते लाए गए दो रोजा विशेष कैंपा दौरान 3 लाख तो वध वोटर ने अपने गणना फार्म भरे। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्सों में बारिश की पेशीनगोई की थी। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। हुण शब्द सर्वन करो प्रोग्राम अमृत बाणी च। सब तो पहला भाई हरजीत सिंह दी आवाज च सर्वन करो ए शब्द।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸਰੋਤਿਓ, ਜੈਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਦ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
6: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
7: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
5: संगीतकार रविंद्र जैन।
7: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
8: वाह,

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: विशेष जयमाला।

0: आजादी, जरा याद करो कुर्बानी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, भारतीय सेना के जांबाज फौजियों के कदम दुश्मन की जानिब जब उठते हैं तो हर आहट पर खौफ का मंजर होता है। हवाएं थम के चलती हैं, भ्रम के बादल छंट जाते हैं, एक धनुष की टंकार सी कौंध जाती है, वक्त कुछ देर के लिए ठहर जाता है और सुनाई देता है तो बस एक जय घोष जो भारतीय सेना के रणबांकुरों का होता है, जीत का वो जज्बा जो जंगी हवाओं के रुख को मोड़ देने का मादा भी रखता है। हर पल जान की बाजी होती है और फतेह से कुछ भी कम गवारा नहीं होता। मातृभूमि की चमक मां भारती की मुस्कुराहट कायम रहे और हर हाल में तिरंगे की शान बरकरार रहे, यही एक सपना आंखों में हर लम्हा सजा होता है। वतन की हिफाजत में बेशक जिस्म लहूलुहान होता रहे लेकिन हौसला नहीं दिखता, तो ऐसे में फतेह भी लाजमी होती है। ऐसे शूरवीरों पर मां भारती को नाज क्यों कर न हो, हमारे सैनिकों के कदम चूमती हैं हवाएं, दिशाएं पेशानी चूम कर बलाएं लेती हैं, हर मां का आंचल भीगता है, फूल इनके कदमों में शोभा पाते हैं, वतन के ये पासबां जब जब फतेह की एक नई इबारत लिखते हैं। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम नमन करते हैं भारतीय सेना के दमदार और जांबाज फौजी साथी इमलियाकुम आओ को।

सन 1999 जब हमारी सेना के फौजी साथियों ने भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे हरफों में लिखी विजय की एक और दास्तान, एक ऐसा युद्ध, एक ऐसी जंग जिसकी तलवारों का लहू आज भी लाल है, जिसके ख्याल से ही दुश्मन की धमनियों में बहता रक्त जम जाता है, जंग के इतिहास में लड़ी गई तमाम जंगों में, बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में और सबसे ऊंचे क्षेत्र में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है कारगिल युद्ध। कारगिल, जो भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित एक नगर है, जिसे सींचती है सुरू नदी की निर्मल धाराएं। कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित ये स्थान श्रीनगर से लगभग 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका सामरिक महत्व कहीं ज्यादा है और इस वजह से इसकी उत्तर पूर्वी सीमाएं और ये इलाका बेहद संवेदनशील भी माना जाता है। साथियों, जाबाज भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गाथाएं स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं, फिर लाजमी भी है कि दुश्मन ने हर मोर्चे पर शिकस्त खाई होगी, लेकिन फिर भी बाज आने का नाम नहीं लेता। वक्त बदला, तारीखें बदली, जमाने आए और गए, लेकिन उत्तर पूर्वी भारतीय सीमाओं से दुश्मनों की घुसपैठ के सिलसिले जारी रहे। कई बार खदेड़े जाने के बाद भी दुश्मनों का भारतीय सरहद में रेंग रेंग कर घुसने का सिलसिला चलता रहा और इस बार चरवाहे के भेष में सीमा पार से भारतीय सरहदी क्षेत्र कारगिल में घुसने की दुश्मनों की खबर पक्की थी।

सन 1999 में मई के महीने में यह खबर पुख्ता हो गई कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से सटे भारत से ही अलग हुए राष्ट्र के घुसपैठिए सैनिक काफी तादाद में कारगिल की चोटियों पर डेरा डाले हुए हैं। मशकोह घाटी में 15,000 फुट की ऊंचाई पर डेरा जमाए कबाइलियों के भेष में पड़ोसी देश के दुश्मन सैनिकों ने इस इलाके को कब्जे में करने की पूरी कवायद शुरू की। भारतीय सेना ने भी बिना वक्त गंवाए अपनी सेना के सभी डिविजनों को सावधान करते हुए कारगिल के इलाके में कार्रवाई का आदेश जारी किया। इस बाबत 4 मई सन 1994 के नागा रेजिमेंट की बटालियन में शामिल होने वाले सेना में अनवरत सेवा देने वाले नागालैंड की सुहानी सरजमी के धाकड़ सिपाही सूबेदार इमल्याकुम आओ को भी तत्काल प्रभाव से कारगिल क्षेत्र में तलब किया गया। दो नागा रेजिमेंट को नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से को महफूज करने और पॉइंट 4875 की दुर्गम चोटी पर दुश्मन सैनिकों की मोर्टार पोजीशन को ध्वस्त करने और दुश्मनों को बेदम करने का जिम्मा सूबेदार इमल्याकुम को सौंपा गया।

0: फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमल्याकुम आओ की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अपने साथियों के साथ सिपाही इमलियाकुम ने इस जगह पर दुश्मन की पोजीशन और लोकेशन को ट्रैप करने का एक खाका तैयार किया। एक खास स्ट्रेटजी के तहत दुश्मन पर धावा बोलने की रणनीति अपने साथियों को समझाई और चल दिए मिशन की कामयाबी के रास्ते।

गौरतलब है कि शत्रुओं ने लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर डेरा जमाया था। उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तादाद दुश्मनों की कितनी है, उनके हथियारों का जखीरा कितना है, इस बात का आकलन सिपाही इमल्याकुम आओ ने अपने तजुर्बे से कुछ हद तक लगाया। लक्ष्य को किसी भी तरह से हासिल करना और पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराना ही अब सिपाही इमल्याकुम और उनके साथियों का मिशन था। सिपाही इमल्याकुम ने इन बर्फीली ढलानों पर अपने सैनिकों के साथ पोजीशन ली। सैनिकों में कुछ गोरखा जवान भी साथ थे जो खुकरी और क्लीवर चलाने में दक्ष थे। वो तारीख थी 8 जुलाई सन 1999 जब दिन में ही इस मिशन को अंजाम देने का निर्णय इमल्याकुम आओ ने लिया और नागा बटालियन को पहली रक्षा पंक्ति में तैनात किया। उधर चोटी पर बैठे दुश्मन सैनिक भी लामबद्ध तरीके से हमले की फिराक में थे। परिस्थितियां अत्यंत विपरीत थीं। सर्दी की धुंध और बर्फीले पहाड़, बेहद संकरे नाले जो बर्फ पे पैर टिकाने और आगे बढ़ने का रास्ता थे। भारतीय सैनिकों की सुगबुगाहट पाकर ऊंचाई पर बैठे शत्रुओं ने मोर्टार और रखे हुए असलाहों और ऑटोमेटिक हथियारों से रह रहकर हमले शुरू किए।

भारतीय सैनिकों पर ऊपर से मोर्टार्स दागे गए, लेकिन ये मिशन जितना खतरनाक था हमारे सैनिकों के हौसले उतने ही बुलंद। हालात की नज़ाकत को देखते हुए, अपने सैनिकों को सावधान करते हुए, दुश्मन सैनिकों को चकमा देते हुए सिपाही इमलियाकुम बड़ी चतुराई से आगे बढ़ते रहे। बर्फीली ढलान से आगे बढ़ते हुए चोटी तक के फासले को तय किया। यहीं दुश्मनों द्वारा कब्जा की गई इस दुर्गम ऊंचाई पर डेरा डाले दुश्मनों की पहली लाइन के एक संतरी को बड़ी फुर्ती से इमलियाकुम ने मौत की घाट उतारा। अफरा तफरी में एक और दुश्मन संतरी आगे बढ़ा, इसे भी सिपाही इमलियाकुम ने मौत की नींद सुला दिया। दुश्मन खेमों में खलबली मच गई और शत्रु सैनिकों ने इमलियाकुम और उनके सिपाहियों पर मशीन गन और ऑटोमेटिक हथियारों से हमले करने शुरू किए।

बिना वक्त गवाए भारतीय सैनिकों ने भी उन पर अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया। सिपाही इमलियाकुम घायल होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे, अपनी गोलियों से कई दुश्मनों को मौत की नींद सुलाया, उन पर हथगोलों से निशाना साधते हुए उन्हें मार गिराया। दुश्मन अब काफी करीब था। घायल अवस्था में उन्होंने दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था में कुछ और को मार गिराया और कई को अपनी संगीन का निशाना बनाया। उनकी इस फुर्ती और हौसले को देखते हुए दुश्मन खेमे में अफरा तफरी मच गई।

0: साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। बर्फीले ढलान की आड़ में कुछ भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। धीरे धीरे ये बर्फीली वादियां दोनों तरफ की गोलाबारी से गूंज उठी और सफेद बर्फ की हसी वादियों में लहू का लाल रंग साफ नजर आने लगा। आगे बढ़ते भारतीय सैनिकों में कई हताहत हुए और कुछ ने मातृभूमि की आन बान और शान में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। जो बिछड़ गए उनके जज्बों को सलाम कर साथी सैनिक मोर्चों पर डटे रहे। जैसे ही शत्रु सैनिकों के अड्डे की थाह का पता चला, सिपाही इमलियाकुम ने भारतीय सैनिकों के साथ दुश्मनों पर तेजी से धावा बोल दिया और अपनी मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कबायलियों की खाल में छुपे शत्रुओं को निशाना बनाया। बस एक ही एहसास, बस एक ही मिशन, देश की सुरक्षा और सामने आ रहे दुश्मनों का खात्मा।

दुश्मनों के बलाबल का अब तक सिपाही इम्लियाकुम को काफी कुछ आकलन हो चुका था। शत्रुओं को निशाना बनाते भारतीय सैनिकों ने ये धावा दिन के उजाले में इतनी फुर्ती से अंजाम दिया कि बर्फीले नाले में कई दुश्मन सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। शत्रु खेमों में भगदड़ मचने से कई शत्रु सैनिक दुम दबाकर इधर उधर भागते हुए हमारे सैनिकों का निशाना बने। कई का सफाया भागने के दरमियान हो गया। अब तक सिपाही इम्लियाकुम आओ भी बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन दुर्गम परिस्थितियां कब हमारे सैनिकों का रास्ता रोक पाती हैं? मंजिल करीब थी, दुश्मन अपने हथियारों और मोर्टार ठिकानों को छोड़ भाग खड़ा हुआ। बचे सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया गया। 20 मिलीमीटर और 21 मिलीमीटर मोर्टार्स के साथ गोला बारूद और हथियारों का एक बड़ा जखीरा, साथ ही कुछ खुफिया दस्तावेज सिपाही इम्लियाकुम ने अपने कब्जे में लिए और दुश्मन के एक बड़े डंप को नष्ट कर दिया। नागालैंड की सरजमीन के एक छोटे से गांव मोकोकचुंग के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए सिपाही इम्लियाकुम आओ ने अपने साहस और पराक्रम से शौर्य की अजीमोशान दास्तान लिखी, जिस पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।

इस करिश्माई जीत को दर्ज करने के बाद भी इम्लियाकुम ने सेना में कई और सफलताएं हासिल की और लगातार नई ऊंचाइयां छूते रहे। साथियों, 8 जुलाई सन 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान 0.4875 को अपने कब्जे में लेने, इस आमने सामने की लड़ाई में कमाल के युद्ध कौशल, सैन्य संचालन क्षमता, सफल कूटनीति और अदम्य साहस के लिए सिपाही इम्लियाकुम आओ को भारत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया।

साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के शेर दिल जवान फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति सहयोग दीपक केसावलेकर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉड, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां तो जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: 9 बजने को आई, आप तो लगता है जैसे घर का एक एक बर्तन पानी से भर लेंगे।
1: जी फरमाइए, क्या कह रहे थे?
0: कुछ नहीं, मैंने कहा जरा जल्दी कीजिए, और भी तो लोग खड़े हैं कुएं पर पानी भरने।
1: जल्दी? अब और क्या जल्दी करूं, कुएं का पानी आपके कहने से ऊपर तो नहीं आ जाएगा।
0: हाँ,
1: कि 50 हाथ के बजाय 25 हाथ रस्सी ढीलने से काम बन जाए। अरे ओ पप्पू, अरे पप्पू, मम्मी से कहना वो बाल्टी कोठी में उलट कर ले आए जल्दी से, तो उसे भी लगे हाथ भर दूं।
0: कमाल है, ये तो ऐसे जम गए हैं जैसे कुआं इनके ही बाप दादों का बनवाया हुआ।
2: हाँ भाई, अब कित कित से झगड़ा मोल लो। इस कॉलोनी का तो यही हाल है, इस कुएं की मोटर खराब हुए आज 4 रोज हो गए।
0: हाँ, यही तो
2: तब से रोज की लत हो गई है। सुबह उठते ही पहले 2 बाल्टी पानी के लिए कुएं पर समय बर्बाद करो।
0: और क्या, देखिए ना, 1 घंटा हो गया लाइन में खड़ा हूँ मैं।
3: गोपाल जी वर्मा साहब,
4: अरे पानी के लिए क्यों लगा रहे?
0: क्या करें साहब,
4: अरे पर आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मुझे कहला देते। अरे अपने लिए रोज 10 खींचनी पड़ती है, 2 आपके घर डलवा देता।
0: क्या बात कर रहे हैं?
4: अरे वैसे एक बात है वर्मा साहब।
0: हाँ सर।
4: अरे कुएं की मोटर खराब होने से सभी को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, पर इस बहाने कॉलोनी के लोगों की शक्ल सूरत तो देखने को मिली। वरना
0: सही बात है,
4: वरना यहाँ का कोई भला मानुस अपने तड़पे से कभी बाहर ही नहीं निकलता था। क्यों, ठीक कह रहा हूँ श्रीमान जी?
2: जी बिल्कुल, मजा फरमाते हैं आप जगत भाई। अब मैं वर्मा जी से भी यही बात कह रहा था कि इस कॉलोनी का तो बुरा हाल है,
0: बहुत बुरा।
2: न कोई कोऑपरेशन है, न कोई सोशल एक्टिविटी। वरना देखिए वो पड़ोस की कॉलोनी कुरुक्षेत्र,
4: नाम है कुरुक्षेत्र, पर कैसे भले लोग रहते हैं वहाँ। वरना एक अपनी कॉलोनी है, दे उल्टे काम। अरे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है भैया।
0: क्यों मानकचंद जी, आप तो दफ्तर में क्लब के सेक्रेटरी हैं, कुछ करिए ना इस कॉलोनी के लिए भी। क्यों जगत भाई?
4: अरे राम भजो भाई, राम भजो। अरे इतना ही हर कोई समझे तो दुनिया बदल जाए। पर माणिकचंद जी, ए वर्मा साहब ने जो क्लब की बात कही है, अरे वैसा कुछ करिए ना अपनी कॉलोनी के लिए। अरे कुछ तो राहत मिले इस मनहूसी से, और कुछ नहीं तो कम से कम कुएं की मोटर ही सुधर जाए।
0: ठीक है, हाँ माणिकचंद जी, अब तो आपको कुछ करना ही होगा। अच्छा अब मैं तो चलता हूँ, शाम दफ्तर से लौटने में मिलेंगे।
4: हाँ भैया, मिलो सब जनी, और कुछ तय कर लो आफतदारी में, तो सभी का भला है। अच्छा, जय गोपाल जी। अब
5: जी, ओ सिंह साहब, घर पर विराजते हैं क्या?
6: कौन है? ठहर गया, उन्हें दरवाजा खोलना।
7: आइए आइए, क्यों जगू बनर, कैसे कष्ट कीता भाई?
4: कोई खास बात नहीं, आप तो जानते ही हैं, आज 4 रोज से कॉलोनी में नल का पानी बंद है।
7: अच्छा?
4: हाँ, वो कुएं से पानी खींच लाने में बाल बच्चेदार परेशान हो रहे, बस उसी चक्कर में आए हम। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, शुभ नाम है माणिकचंद जी, सेल टैक्स में मुलाजिम है।
7: नमस्कार।
2: नमस्कार साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।
4: तो सिंह साहब, कॉलोनी के तमाम बाशिंदों की एक मीटिंग करनी है।
2: दरअसल बात ये थी कि पानी की इस दिक्कत का कोई हल निकाला जाए, और फिर लोगों ने चाहा तो कॉलोनी के लोगों का एक क्लब बनाया जाए।
7: क्या कहा, इस कॉलोनी वाले ना क्लब?
2: जी।
7: चलिए साहब, यहाँ के लोग भी हैं इस काबिल, ना किसी में एटिकेट्स है ना मैनर्स, तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं भाई। क्लब के लिए तो कुछ स्टैंडर्ड के लोग हों। खैर, जहाँ तक पानी की दिक्कत का सवाल है
2: जी,
7: जगत भाई आप तो जानते हैं हमारे घर पर आजकल पानी की जरूरत ही क्या पड़ती है।
2: अच्छा।
7: सारे बाल बच्चे छुट्टियां में पीलीभीत गए हुए हैं, 1-2 बाल्टी बड़ी मुश्किल के नाल जरूरत पड़ती है, नौकर ले आता, अपना तो बस यार काम चल ही जाता है।
2: सो तो ठीक है सिंह साहब, पर सवाल तो पूरी कॉलोनी का है।
7: माफ कीजिए साहब, सानू ना उलझाओ इन ठल्लेबाजों की हरकत है यार। कॉलोनी वालों से अपना वास्ता ही की पड़ता है, जो इन झंझटों में बढ़कर अपना अननेसेसरी समय बर्बाद करें हम। अच्छी बात है माणिकचंद जी, अभी मुझे जरा पिक्चर जान दी जल्दी है।
2: अच्छा,
7: फिर और कोई बात होगी तो फिर मिल लेंगे।
2: अच्छा अच्छा, माफ करिएगा। आपका खामखा तकलीफ दी।
7: कोई गल नहीं यार, इसमें तकलीफ कैसी बादशाह हो। अच्छा नमस्कार।
4: जय गो, नमस्कार।
2: देखा जगत भाई आपने, मैंने कहा था ना कि कैसे कैसे स्वार्थी जीव बसते हैं इस कॉलोनी में, क्या खास सोशल एक्टिविटी होगी?

आइए हवा महल में आज सुनते हैं हास्य नाटिका कॉलोनी कल्याण मंडल, लेखक एमपी लेले, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: अजी छोड़िए मानक चंद जी, सबको एक से थोड़े ही होते हैं। अरे वो भी मान जाएंगे, बड़े काम का आदमी है, और फिर इसी लाइन से निपटाते चलेंगे हर घर को। सुबह से शीघ्रम कल ही रख लो शाम को मीटिंग।
1: अरे पर लोग तो तैयार हों, अब फिर मीटिंग रखोगे कहाँ?
0: और कहाँ? अरे भाई कुएं पर रख लो, मैं लगवा दूंगा दरी।
1: पर
0: अब किस बात की पर परंतु लगा रहे हो माणक चंद जी? अरे ऐसे थोड़े ही हम हिम्मत हारने वाले हैं। बस अब निकल पड़ो और जो मिले उसे मीटिंग की खबर देते चलो। चलो चलो।
1: खैर आप कहते हैं तो चलो।
0: आज की ये सभा किस लिए बुलाई गई है आप में से हर कोई जानता है। गरज ये कि अपनी कॉलोनी में आज कई रोज से पानी की समस्या हो गई है। कुएं की मोटर बिगड़ने से नल में पानी नहीं आता और ये एक ही कुआं होने से।
2: ओ वहां से आप ये सारे बयान किसकी जानकारी के लिए दे रहे हैं? यहाँ का तो हर बच्चा बच्चा इन बातों को पहले से ही जानता है। अरे भाई हम इनका यहाँ भाषा सुनने थोड़े ही आए हैं। फिजूल वक्त किसके पास रखा है यहाँ पर?
0: भाइयों जरा शांति रखिए, मैं यहाँ भाषण देने कतई ही नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं तो आपके सामने कॉलोनी की दिक्कतों के बारे में।
2: हाँ हाँ जो कुछ कह रहा हूँ जल्दी से कहिए, औरों को भी तो कुछ बातें कहनी होंगी।
0: कमाल करते हैं आप।
2: क्या कमाल?
0: आप खा बीच में ठोके जा रहे हैं। अरे मुझे कुछ कहने तो दीजिए।
2: तो कहिए ना, रोकता कौन है आपको?
0: चुप किया मैं कहता हूँ बैठ जाइए।
3: अरे क्या? अरे जगत भाई किससे उलझ रहे हैं आप? ये लोग तो पेशावर पार्टीबाज लोग हैं, आप तो सेठ रूपचंद को सदारत करने के लिए कहिए और बैठ जाइए।
0: हाँ हाँ
3: वो खुद संभाल लेंगे।
0: हाँ वही तो भाइयों, मैं इस कॉलोनी के सेठ रूपचंद जी से निवेदन करता हूँ।
4: भाइयों मने घनी खुशी है कि आज थाने मने अठे अध्यक्ष बनाए हो। मने ऐसो काम को रिवाज कोनी है, वास्ते बाबू मानक चंद सभा को मारी तरफ से काम चलावे गो।
1: भाइयों अभी जगत भाई ने कॉलोनी में पानी की दिक्कत का आपके सामने बयान किया है। वो मसला तो खैर अहम है ही, लेकिन कॉलोनी में रहने वाले हम में से कुछ लोगों का ख्याल है कि कॉलोनी की खुशहाली के लिए काम करने वाली एक संस्था बनाई जाए। उपस्थित भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इस बारे में अपनी अपनी राय रखें। जो लोग बोलना चाहते हैं वे अपना नाम वर्मा साहब को नोट करा दें। नुक्कड़ वाले कामेश्वरी प्रसाद आपके समक्ष अपना विद्वत्तापूर्ण भाषण देंगे। आइए कामा बाबू।
5: सज्जनों भाई सुनो भाई, बड़ी खुशी की बात है कि कॉलोनी के लोग आज यहाँ पहली बार इकट्ठे हुए हैं। भाई हमारे देश में पुराने जमाने से ऐसी सभाओं की परंपरा है और गांव में अब भी चौपाल पर सभाएं होती हैं। लोग बाग हुक्का ढिलम पर मिलते हैं। अब ये शहर है तो मैं यहाँ के आयोजकों से इतना कहूँगा कि कम से कम ऐसे अवसर पर आगे से पान पत्ते का इंतजाम करो।
1: भाइयों अब 7 नंबर वाले श्री घोष बाबू, जिन्होंने इस कॉलोनी में पहला प्लाट बनाया था, आपसे 4 शब्द कहेंगे।
6: देवियों
7: क्या लोचा, एक खाने तो सब मरद है, मैं तो भूल ही गए। बा कॉलोनी में सब मरद लोग रहता है। जा हाँ तो आप लोगों से आज यहाँ को मुलाकात करके हमको अपूर्व खुशी होता है। बाबू माणिक चंद जब सकाल को हमसे मिला और बोला कि कॉलोनी के वास्ते एक ठो सामाजिक संस्था खोलना चाहता है तो हम ही बोला खोलो। गुड, किंतु यही शुभ समय हम केवल इतना ही बोल नहीं सकता जे कॉलोनी में जखन हम प्रथम मकान बनवाने को आरंभ किया ना, तब हमने कुएं से प्लॉट ऑफ दी 400 फीट पाइपलाइन नीचे के खर्चा से डाला था, नीचे के खर्चा से। ऑफ कोर्स उसका उपयोग बाद को सब लोगों ने किया, सही जन्ने यही हमारा दरखास्त कॉलोनी को है जे सामाजिक संस्था हमको कुछ टाका माने रुपया क्षतिपूरण बाबद कर दे।

0: চন্দ কথা বলকে হাম আপনা ভাষণ বন্ধ করতে ধন্যবাদ।
1: परिचित है कुएं की मोटर सुधरवाने के बाबत अपने सुझाव रखेंगे।
2: देखिए आप शायद मानेंगे कि जहां तक छोटी मोटी मशीनरी की बात है आप सब लोगों से इस मामले में मैं बहुत अधिक जानता हूं। पर अपनी कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मुझसे कुछ कहने में पता नहीं क्या शर्म लगती है, वरना मैं चाहूं तो इस मोटर को अभी एक मिनट में सुधार दूं। पर मैं अपने आप ऐसा क्यों करूं? आखिर कोई मुझसे कहे तो।
3: अरे जनाब, इसके कहने की राह देख रहे हो? कोई बंगाल का निमंत्रण ले आएगा आपके?
2: वाह साहब वाह, मैं अपने आप क्यों ऐसे काम में अपनी गर्दन अटका लूं? आखिर सारी कॉलोनी का मामला है। आपको याद होगा पीछे मैंने इस मोटर में एक नया वाशर डाला था, आप मोटर खोलकर देख सकते हैं कि वो अभी भी दोबारा बिगड़ा नहीं होगा। पर यहाँ के लोग बाग किसी का एहसान मानने को तैयार ही नहीं, कहने लगे जमुना लाल जी ने इस काम में बड़े दिन लगा दिए।
3: तो क्या गलत कहा था? जरा सा वाशर डालने के लिए 10 दिन मोटर आपके घर खुली पड़ी थी।
2: आप भी कमाल करते हैं, बिना देर लगे कोई काम अच्छा होता है? इससे मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि कॉलोनी का कोई मछली काम हाथ में नहीं लूंगा। धन्यवाद।
1: देखिए भाइयों, अब हमारी कॉलोनी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता श्री शंकर दास जी हमें सामाजिक कार्य के विषय में उपदेश देंगे। आइए आइए शंकर दास जी, आइए।
4: भाइयों, बहुत दिनों से मैं ऐसे मौके की तलाश में ही था कि आप लोगों के सामने अपनी बात रखूं। मुझे खुशी है कि कुएं की मोटर खराब हुई और आपने इस मीटिंग का आयोजन किया।
5: मीटिंग कहीं ऐसी चलती रहेगी कहीं? अरे वो कहीं काम की बात होगी? अरे मारे दुकान जानो है, अरे टेम वही चाले है, हिसाब मिलानो है, सारी पूंजी संभालनी, अरे यो कहीं?
6: हाँ हाँ सेठ साहब, अभी नहीं जाता हूँ। अरे भाई महाराज जी, ये क्या धूमधाम मचा रखा
1: है? हाँ तो भाइयों, अब मैं हमारे सुनिए, अब मैं हमारे प्रमुख कार्यकर्ता श्री वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रस्तावित संस्था की योजना पर प्रकाश डालें।
7: अध्यक्ष महोदय और कॉलोनी वासियों, मेरा सुझाव है कि हम एक संस्था खोलें जिसका नाम कॉलोनी कल्याण मंडल रखा जाए। प्रस्ताव मंजूर है? हाँ तो सुनिए, मंडल के साधारण सदस्य कॉलोनी में रहने वाले सभी परिवारों के मुखिया यानी के गृहपति होंगे। हाँ सुनिए, और हर साधारण सदस्य हर महीने 5 रुपए चंदा देगा।
8: 5 रुपए हमारे किस लिए देंगे?
9: कॉलोनी कल्याण मंडल, एमपी लेले के लिखी यह हास्य नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। ये झलकी आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जावेद अली की आवाज़ के साथ। फिल्म का नाम है राज 3, गीत और संगीत है राशिद खान का

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं काइट्स फिल्म का गाना के की आवाज में। गीत नासिर फराज का है, संगीत राजेश रोशन का।

आइए अब सुनते हैं अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में केदारनाथ फिल्म का गाना, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत

0: तीन स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में

0: कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडिनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी।

सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सिमी समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है।

0: E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सके। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वह नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ते ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक के गाए कामचोर फिल्म के इस गाने के साथ। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में पिघलता आसमान फिल्म का गाना। गीत माया गोविंद ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गाना आत्मा राम फिल्म से है। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत विश्वेश्वर शर्मा का है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में हम सब उस्ताद हैं फिल्म का गाना। गीत असद भोपाली ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए स्वयंवर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीत गुलजार का है, संगीत राजेश रोशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

विमल रॉय के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में बिमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी बिमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को बिमल दा ने सेल्यूलॉयड पर उतारा था। यह फिल्म थी यहूदी।

बिमलदास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और बिमलदास का परिवार सब कुछ लुटाकर खाली हाथ कोलकाता चला आया।

बिमल दा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में बिमल दा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने बिमल दा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमल दा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए बिमल दा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।

न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदयर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदयर पौथे कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमा घर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमल दा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रहीं। फिल्में थी अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमल दा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक वाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमल दा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए। और इस तरह मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की माँ। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रुपए। इस बीच

अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ चुके थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमलदा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमलदा की प्रतिभा को मिला सम्मान और सराहना।

0: भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डीसिका, रोजेलिने और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे। सब खामोश थे। ऋषिदा के मन में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदा से अपने मन की बात कही। बिमलदा ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: गुरु तक तक तक तक तक तक तक गिन गिन रे, जग जग जग जग जग जग गिन गिन रे।
2: गुरु जग जग गुरु जग जगी गुरु तक तक गुरु जग जगी गुरु जग जग।

सन 1953 में यह फिल्म केवल 4 हफ्तों के लिए मुंबई के मेट्रो थिएटर में रिलीज की गई, जहां इसके प्रीमियर में आए फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी सितारे। फिल्म के प्रीमियर के आंखों देखा हाल की रेडियो के लिए कॉम्पेयरिंग कर रहे थे बलराज दत्त, यानी जाने माने अभिनेता सुनील दत्त।

लेकिन इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। निरूपा रॉय और बलराज साहनी के अभिनय, शैलेंद्र के गीतों, सलील चौधरी के संगीत और बिमल दा के निर्देशन ने 2 बीघा जमीन को बना दिया हिंदी सिनेमा का एक मास्टरपीस।

लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया विराज बहु का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

अपने बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंतीमाला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

0: 1958 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमति बेहद कामयाब रही और मधुमति ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।
1: मैं तो

1959 में निर्मित बिमलदा की फिल्म सुजाता एक और बेहद खूबसूरत और मासूम सी फिल्म है। सुनील दत्त और अभिनेत्री नूतन की जोड़ी के काम को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। फिल्म सुजाता बिमलदा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है।

बंदिनी बिमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।

विमलदा ने बाहर के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थी अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक, इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहू, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फैमी। बतौर कैमरामैन विमलदा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदा, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चंबे दी गली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदयर पौथे और हमराही। हमराही उदय पौथेर का ही हिंदी संस्करण थी। विमलदा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। विमलदा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन यह फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को विमलदा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। विमलदा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सदैव ऋणी रहे।

0: जाना। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चल।

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाते हैं, और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती है, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़न

0: की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।
1: माझी

0: लिए इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रजा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मर क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

पंचकूला पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने 13 लाख से 10 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश करदिया दो विदेशी नागरिकां नूं गिरफ्तार करके 5 दिन के पुलिस रिमांड से लिया। ते मौसम विभाग ने अज ते कल कुछ थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश की भविखवाणी की है। एसन मुख प्रादेशक खबर। इस वेल तुसी आकाशवाणी चंडीगढ़ के नाल एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम सुरसांझ। सुरसांझ प्रोग्राम के सारे श्रोतियां नूं साडा प्यार भरिया नमस्कार। प्रोग्राम दा आगाज इस गीत दे नाल आवाजा ने सोनू निगम ते गायत्री अय्यर दियां, संगीतकार ने अनु मलिक।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: यह प्रोग्राम दी अगली पेशकश गीत निभाया मीका सिंह ते अमृता कक ने। बोल शब्बीर अहमद दे।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोतिया आकाशवाणी चंडीगढ़ तो तुसी पंजाबी गीत सुन रहे हो। प्रोग्राम है सुरसांझ वारी इस गीत की आवाज़ भी प्राग दी तर्स एवी सदा दी बोल ने अमृत ढिल्लों दे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोतियों हुने डुएट गीत असी चुने आई गुरदास मान दे संगीत च। गायक कलाकार ने गुरदास मान ते अलका याग्निक।

0: ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂਝ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।